सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 भाद्रपद माह की तिथि 22, तदनुसार 14 सितंबर ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चाई बासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और साथी हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबको आकाशवाणी चाईबासा की ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण के स्वर में ये वंदना। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय रचना।

श्रोताओं जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में इस भक्तिमय गीत के साथ ही हमारा आज का समर्पण कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। श्रोताओं, सवेरे 7:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संदेश का प्रसारण। उसके बाद सवेरे 7:20 से आप सुनेंगे जोहार चाईबासा कार्यक्रम का शेष भाग। सवेरे 8 सुनिएगा समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। सवेरे 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। सवेरे 8:40 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे उरांव लोकगीतों का। श्रोताओं, सवेरे 9 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। सवेरे 9:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सवेरे 10 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10:30 से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। शाम 4 मुख्य समाचार। शाम 4:02 पर आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। और शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विवरण शाम 5:02 पर। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे एक ही गायक द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। शाम 6 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम होकड़ा शाम 6:02 पर। इस कार्यक्रम में मनोरंजन कीजिएगा अमरनाथ सामड़ और साथियों के स्वरों में एक हेरो गीत से। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा योग का महत्व। भेंटवार्ताकार होंगे रश्मि शिंकू, उनसे बातें कर रही होंगी विमला हेम्ब्रम। आपका मनोरंजन करवाएंगे आंधी गीत से बीरबल हांसदा और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6:30 पर सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। श्रोताओं, उसके बाद हमारे केंद्र से शाम 7:15 पर सुनिएगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 8 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सतीश कुमार शर्मा के स्वर में भजनों का। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे भजनों का सतीश कुमार शर्मा के स्वर में। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

जोहार चाईबासा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को मेरा यानी उदय पान का जोहार और नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आप सबों को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ। अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आराधना।

श्रोताओं, हमारे जोहार चाईबासा कार्यक्रम को अब यहाँ पर देना होगा एक विराम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 7:09 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संदेश का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
1: प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया। यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृ

0: था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी, राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था, अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी 7वीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी है। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 7:19 हो रहे हैं और अब हम हैं हाजिर लेकर जोहार चायबासा कार्यक्रम का शेष भाग। इस भाग में सबसे पहले आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म संगम का ये गीत। माफ कीजिएगा, मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म संगम का ये गीत।

मुकेश लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे फिल्म संगम का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमजोली से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था हम जोली। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कशिश।

0: हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कशिश का ये गीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और मेरे यानी उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चित चोर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चित चोर का गीत येसुदास की आवाज़ में। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

श्रोताओं, ये था फिल्म रजनीगंधा का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है लूटमार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए अब सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धरती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म धरती का गीत। और अब आइए बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत हमारी हर सुबह सुरक्षित होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना की। श्रोताओं, जब हम और आप अपने घरों में अपने जो है अपनों के साथ त्यौहार मना रहे होते हैं, तब सरहद पर -40 की ठंड में या तपते रेगिस्तान में कोई हमारी खातिर जाग रहा होता है। उनका एक ही धर्म है, सेवा परमो धर्मा। वो सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि जब भी देश पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले देवदूत बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। सलाम है माँ भारती के उन वीर सपूतों को जो हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर देते हैं। उनके इस जज्बे को हमारा पूरे दिल से सलाम।

श्रोताओं, प्रदीप और साथियों की आवाज़ों में फिल्म जागृति के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का जोहार चाईबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोम्मादेवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
5: वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
6: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
7: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ट्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सीजीएल परीक्षा घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, देवघर से दुमका पशुपालन विभाग का लिपिक गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार की कामना की। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले चार दिन बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप में सीओई सिमडेगा ने जीता दोहरा खिताब। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी कर अभ्यर्थियों को पास कराने के मामले में झारखंड सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी की 5 सदस्यीय टीम ने देवघर पुलिस के सहयोग से रिखिया थाना क्षेत्र के बंधा बैजनाथपुर में छापेमारी कर पशुपालन विभाग के लिपिक सुधाकर कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। छापेमारी के दौरान उसके पास से दर्जनों चेकबुक, कई लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकद रुपए समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोष सिद्धि दर के आंकड़ों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदी दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में भागीदारी का संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में एक महीने तक चलने वाले विशेष अभियान की तैयारी की है। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने अभियान की जानकारी दी।
1: सेवा संकल्प अभियान पूरे एक माह यह चलेगा। 12 प्रकार के कार्यक्रम इस पूरे अभियान के दौरान समस्त देश में चलाए जाने वाले हैं और हम सब लोग उनकी इस अहिंसा सेवा के प्रति कृतज्ञता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस पूरे एक महीने के कार्यकाल को सेवा के काम के साथ जोड़कर यह चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मक पहल लाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि यह पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के RKCM स्कूल ऑफ एक्सलेंस की छात्राओं काजल कुमारी और महालक्ष्मी केशरी द्वारा रक्षाबंधन पर भेजी गई हस्तनिर्मित राखियों के जवाब में आशीर्वाद पत्र भेजा। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने इसे भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व बताते हुए छात्राओं के स्नेह के लिए आभार जताया और उनके परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का पत्र मिलने पर विद्यालय की प्राचार्य ने इसे पूरे विद्यालय और जिले के लिए प्रेरणादायी बताते हुए आभार व्यक्त किया। झारखंड चैंबर कार्यकारिणी चुनाव में टीम तुलसी पटेल के 21 प्रत्याशियों में से 13 ने जीत हासिल की है। दूसरी टीम के 8 प्रत्याशी ही जीते, वहीं तीसरी टीम P21 का एक भी सदस्य नहीं जीत सका। चुनाव जीते रोहित अग्रवाल ने कहा कि तुलसी पटेल ही नए अध्यक्ष होंगे और इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
2: हाँ जी, टीम तुलसी से जीते हैं, अध्यक्ष तुलसी पटेल बनेंगे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे ही परिपाटी है जिसके 11 से ज्यादा होते हैं। तो इस केस में हमारे 13 है, दूसरी टीम के 8 है, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि 21 के 21 मिलकर काम करेंगे और चेंबर को अलग लेवल पे लेके जाएंगे।
0: साहिबगंज जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण, राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त दीपक दुबे ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मी जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं।
3: जिला प्रशासन की कई टीमें, NDRF की 2 टीम सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण कर रही है। जन वितरण प्रणाली के डीलरों को निर्देश दिया गया है। इस माह का खाद्यान्न है, तत्काल युद्ध स्तर पर लाभुक है, उनके भी 2 दिन के अंदर वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन सतत प्रयासशील है, जिले में बाढ़ पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता पहुँचती रहे और उनकी समस्या का निराकरण किया जाए।
0: कोडरमा घाटी के मेघातरी कालीमंडा के समीप देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 टेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक टेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक केबिन में काफी देर तक फंसा रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। और अब मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों से बारिश में खुले में नहीं जाने की अपील की है। 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में COE सिमडेगा ने दोहरा खिताब जीता। पुरुष वर्ग में लिटिल टाइगर को 5-3 से हराकर लगातार दूसरी बार और महिला वर्ग में COE ए ने STC सिमडेगा को 5-3 से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी। पुरुष में आदिवासी हॉस्टल ए और महिला में संत जेवियर वरवाडी तीसरे स्थान पर रहे। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 58 टीमों ने भाग लिया।
4: यह ध्यानचंद प्रतियोगिता लगातार 16 दिनों तक चला। 16 दिनों में कुल 128 मैच महिला पुरुष खेले गए। 58 टीमों के बीच आरत महिला वर्ग में COE सिमडेगा की टीम ने सिमडेगा को पराजित कर विजेता बनी। पुरुष वर्ग की टीम में COE सिमडेगा की टीम ने सिटी टाइगर टीम को पराजित कर विजेता बनी।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ब्रिक्स सम्मेलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, ब्रिक्स का ऐलान, ताकत नहीं समान नियमों से चलेगी दुनिया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, झारखंड चैंबर चुनाव में टीम तुलसी पटेल ने मारी बाजी, 13-8 से मिली जीत। दैनिक भास्कर ने कतरास में भूधसान की खबर को अपनी पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में मदद करेंगे भारत और चीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CGL परीक्षा घोटाले में CID की बड़ी कार्रवाई, देवघर से दुमका पशुपालन विभाग का लिपिक गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार की कामना की। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिन बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और 21वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर जिला हॉकी चैंपियनशिप में COE सिमडेगा ने जीता दोहरा खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: एक घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
6: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
5: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
6: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
5: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
6: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
5: पानी भी नहीं।
6: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
5: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
6: स्वस्थ बच्चा खुशियाँ अपार।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मैं चली
8: कहाँ?
5: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
9: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
10: अचानक हाथ पांव लुंजपुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
9: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
10: एक एक महीने के अंतर पर दिलाएं।
9: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
10: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
9: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
10: 2 बूंद जिंदगी के।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक में आज आप आनंद ले रहे हैं। उरांव लोकगीतों का कलाकार हैं नारायण भगत और साथी।

श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी के महक में आज आप आनंद ले रहे हैं और हम लोकगीतों का कलाकार हैं नारायण भगत और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे उरांव लोक गीतों का कलाकार थे नारायण भगत, और साथ ही हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार, और साथ ही हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और लगातार हमारे कार्यक्रम भी सुन रहे होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आज आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தான் சுயம் நிதி கட்டுப்பாடு.
1: பாரதிய சேனா.
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को अग्रिम स्थान मिला है। हिंदी भारत की मूल भाषा है। ये भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों को पहचान देती है, यानी कि हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। श्रोताओं, हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करवाती है। श्रोताओं, विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान दूसरा है। भारत देश में ये भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा को 14 सितंबर यानी आज ही के दिन सन 1949 के दिन आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। श्रोताओं, भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, जो ये साबित करता है कि भारत देश में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म देव भाषा संस्कृत की कोख से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है। श्रोताओं, हिंदी एक भावात्मक भाषा है जो लोगों के दिल को आसानी से छू लेती है। हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलनों में जो है उनकी भाषा भी रही है। श्रोताओं, आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते अंग्रेजी भाषा का सभी क्षेत्रों में चलन बढ़ गया है। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है, जो एक सोचने वाली बात है। श्रोताओं, फिर भी दुनिया में हिंदी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषा भविष्य की भाषा है। एक भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हमें भी हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। श्रोताओं, पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र के बड़े जो है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रोताओं, इस उत्सव को माता पार्वती और भगवान शिव के प्यारे पुत्र गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ ही हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9:09 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पॉडकास्ट सीरीज़ प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
2: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
1: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
2: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
1: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
2: मन की बात

0: पेपर्स, और फिर कारण पढ़िए, देर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ, कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए? 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस दिस वर्क, दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए, और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है, और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चीटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 ईयर्स कंटिन्यूस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है, और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है, एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर।
1: सो बहुत ही, मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलेबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है, तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 लाख रुपीज फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 लाख रुपीज से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग, एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली।
1: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे, कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
0: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे। तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये ये उल्लू हमारे घरों में

0: रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं, तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है। तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए। और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम, तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी। और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटिफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए, जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले, तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए। और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से, तो ये दिखना नहीं चाहिए। कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है, इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इम्पोर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
0: यस यस ऑफ कोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से
0: भी? अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का उसका कैसे यूज किया जा सकता है, दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ. मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस. एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ है, बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे हैं. मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं. तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है. तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं, यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे. तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए. तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं. कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना, आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते? 2021 की बात है ये. तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए, फिर बना लोगे? तो दे सेड यस. बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे यूज्ड टू, दे लाइक हाँ कर लेंगे ना मैम. दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक, कैसे होगा. तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था, लेकिन QR बन गए थे. तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं. फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो. इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला, पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं. तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं. तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ. तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं. तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है. अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था, और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को. तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे. ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शंस के मिला.
1: बच्चों में बहुत उत्साह था.
0: तो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए. तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया, जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था. और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो. तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये. तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं. तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं, तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है. कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं. तो हमने उसमें विधि लिखी, अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए. तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है. फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है, यदि आप इसे खा लेते हैं, तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा.
1: कोई भी जो विजिटर है, जो भी वहां से गुजर, स्कैन करिए और आपको
0: यस, यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं. फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहाँ कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट. तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आर एरिया. तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स. तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम, और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए. मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं. फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व्स में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया, हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया. तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया, और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया. अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है.
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है, जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का. और जो दूरगामी फायदे क्या है, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ. एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें, तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला मैम, बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं, और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाइज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप क्यू आर कोड या पीबीएल का इम्पैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट क्या है, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ क्यू आर कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि क्यू आर कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सके कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वर स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो he said कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो I congratulated him and then he was like मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, जैसे आप कह रही हैं कि वो रिसर्च जो स्टेज है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे डायनामिक चेंजेस होते हैं प्रोजेक्ट में, उसको एक सक्सेस तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो माइंडसेट है फॉर लाइफ, ता उम्र के लिए वो एक जो कंजर्वेशन है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, गांव में जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसे कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है। मैं
1: बिल्कुल जरूरी है हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड

0: में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
1: मैम, इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर, तो इस यहाँ से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन्स रखे, तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
0: बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
1: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती है, उनमें भावनाएं होती है, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था, तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, 1 महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
0: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
1: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
0: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन हैं। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9:41 हो रहे हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आज और कल के इस गीत से।

कार्यक्रम रसरंजन का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम था आज और कल। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मशाल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। और भाई सुनते हैं अगला गीत येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर

0: 7116699 टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंग पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और अब श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म रात और दिन का गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
0: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
2: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। बधाई हो।
6: धन्यवाद,
4: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
5: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय

0: आइए मारिया जी।
1: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ?
0: जी
1: आप कुछ उदास लग रहे हो।
0: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
1: और बुरी?
0: जी।
1: अब भला वो कैसे?
0: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: जी
2: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
3: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
1: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
2: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
4: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
5: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
4: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
5: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए।

0: दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
0: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: 6 मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बने।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

गीत के साथ ही हमारी आज के आवसा चले कार्यक्रम का वक्त यहीं समाप्त होता है। सिंधु मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति प्रभु शरण के थे। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची और मैं सिल्वा आपके साथ। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है
1: मनीष
0: जी। हाँ मनीष, आज की इस शुरुआत को करने के लिए हम सबसे पहले अपने कुछ सुविचार जो लेकर आए हैं उसे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हालात नहीं अपने हौसलों पर भरोसा करते हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लाती है, बस उसे पहचानने और मेहनत करने की जरूरत है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का दिन पूरी तरह आपके हाथ में है। हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दे और सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और नित्य हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। दिशा और मेहनत सही हो तो गति अपने आप परिणाम ले आती है ना मनीष?
1: हाँ
0: हाँ,

0: सिल्वा, जोहाराची में आगे बढ़ने के पहले थोड़ी मौसम की बातें हम कर ले। और अगर बात करें मौसम की, तो आज रांची जिले में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
1: जी बिल्कुल मनीष, ये तो मौसम की उतार चढ़ाव होते रहती है। तो अगर हम इस महीने सितंबर माह की बात करें तो इस महीने मानसून विदा हो रहा होता है ना मनीष, और मौसम बदलता रहता है, इसलिए इस समय खास स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए श्रोताओं, हमें अपने आसपास की जगहों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए।
0: क्योंकि पानी से होने वाली ये जो बीमारियां हैं, जैसे टाइफाइड या पीलिया, से बचने के लिए आपको हमेशा उबला हुआ और साफ फिल्टर का ही पानी पीना चाहिए।
1: हाँ जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा श्रोताओं को बताया कि हमें उबला और साफ पानी पीना चाहिए, और अपने जो भी हम खान पान डाइट में जो भी चीज़ लेते हैं उसमें विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे आंवला, नींबू और संतरा हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, ताकि बदलते मौसम में सर्दी खांसी ना हो। तो इसी मौसम के साथ आइए अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मौसम की जानकारियों के बाद क्यों ना अब जिंदगी की भी कुछ बातें हो जाए सिल्वा। जिंदगी वो अस्पंदित मूर्त जीवन शक्ति है जो आपके जिंदगी के रंगों में उभरते। जिंदगी हमारे जीवन का वो उलझा हुआ जाल है जो इस धरती पर हमें वर्षों से समेटे हुए है।
1: हाँ मनीष, जिंदगी वो अनसुलझी पहेली है जिसे हम अब तक सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं जब तक जिंदगी हमें इजाजत देती है। जिंदगी वो कहानी है जिसके हम नायक हैं। जिंदगी वो कैनवास है जिस पर हम अपने सपने, आशाओं और आकांक्षाओं को चित्रित करते हैं। जिंदगी वो जीवन है जिसे हम जीते हैं और वो जीवन है जिसका हम सपना देखते हैं।
0: जिंदगी वो चुनाव है जो हम करते हैं और वो परिणाम है जिनका हमें सामना करना पड़ता है।
1: तो जिंदगी की इस हसीन खूबसूरत दुनिया में हम जीते चले और ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सिल्वा, इतिहास की परिभाषा हर इतिहासकार ने अपनी तरह से दी है। इतिहास के पन्नों में युद्ध भी है,
3: बुद्ध
2: भी है, राग भी है, द्वेष भी है। ये आपके व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने इतिहास से क्या सीखते हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए इतिहास में हुई गलतियों से सीख लेना चाहिए। हर देश को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इतिहास युद्ध करके ही लिखा जाए। मनुष्य के जीवन में बहुत सी मुश्किलें हैं जिनका हल निकाल कर भी इतिहास लिखा जा सकता है।
3: जी हाँ, बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा।
2: और इतिहास, एक बात ये भी सच है कि इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। और आज के इतिहास की अगर बात करें तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 1770 ईस्वी में आज ही के दिन प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। 1833 ईस्वी में भारत में पहला गवर्नर विलियम मिंटिक बने। 1901 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1917 ईस्वी में रूस देश आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र देश घोषित हुआ। और 1959 ईस्वी में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला मानव निर्मित पहले वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत भी की।
3: जी हाँ मनीष, 1960 ईस्वी की अगर हम बात करें आज ही के दिन 14 सितंबर में, तो खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। और 1999 ईस्वी में किरीबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गए। और 2000 ईस्वी में माइक्रो ने विंडोज ME की लॉन्चिंग की।
2: 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और 2003 में ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ।
3: जी हाँ मनीष, और 2006 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इप्सा की सहमति हुई थी।
2: 2007 की बात करें तो ताने गेशिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह S2A प्रक्षेपित किया गया। और 2013 ईस्वी में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपके भारत कोश का प्रक्षेत्र नाम है।
3: जी हाँ मनीष, बिल्कुल, ये तो ऐतिहासिक बात हुई। और आज हम कुछ जानकारी और श्रोताओं को दे दें मनीष जी, कि 14 सितंबर को कौन कौन से महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो महान व्यक्तियों का जन्म 1910 ईस्वी में आज ही के दिन में रासुना सायद का जन्म हुआ था। वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय महिला जंबाजों में से एक थी।
2: 1914 ईस्वी में गोपाल परमानंद सिप्पी का जन्म हुआ, जो एक फिल्म निर्देशक थे। और 1930 ईस्वी में राजकुमार कोहली का जन्म हुआ, वे फिल्म निर्माता थे।
3: 1963 ईस्वी में भारतीय क्रिकेटर रोबिन सिंह का जन्म भी हुआ था। ये तो हो गई जन्म की बातें मनीष जी। अब आज ही के दिन में बहुत सारे जो महान व्यक्ति थे उनका निधन हो चुका। चूंकि किसी का यहाँ आना और यहाँ से जाना काफी दुखद घटना होती है, लेकिन फिर भी मनीष जी हम आज श्रोताओं को आज के दिन में हुए महान हस्तियों के निधन की जानकारियां दे दें। तो हिंदी के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध कविवर चंद्र कुंवर तवाल जी का निधन आज ही के दिन 1947 ईस्वी में हुई थी।
2: 1992 ईस्वी में चंद्र सिंह विरकाली का निधन हुआ, जो कि आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे।
3: और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार श्री तारा शंकर वद्योपाध्याय का निधन में आज ही का दिन हुआ। और ईस्वी थी 1971 की बात है ये।
2: और आज के मुख्य दिवस की बात करें तो आज पूरे भारतवर्ष में यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक के रूप में हिंदी को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। ये तिथि 1949 में भारत के संविधान के मसौदे तैयार करने के दौरान बनी, सहमति का प्रतीक है। और जब संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा का ढांचा तय किया था।
3: जी हाँ बिल्कुल मनीष, और अगर हम हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर लगभग 3 वर्षों तक बहस की और 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के मसौदे के दौरान भारत गणराज्य में आधिकारिक दर्जा प्राप्त करने वाली भाषाओं पर एक समझौता हुआ, और यह समझौता जिसे आम तौर पर मुंशी अयंगार सूत्र भी कहा जाता है।
2: हिंदी दिवस केंद्र की राजभाषा के रूप में हिंदी के ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व को उजागर करता है। हिंदी दिवस छात्रों को हिंदी से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये तो हो गई दिवस की बात, और आज के दिन बहुत सारे पर्व त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। तो आज ही के दिन गणेशोत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है और घरों व पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो क्यों ना मनीष जी, हम इस आज के इस पावन पर्व पे कुछ जो भगवान से संबंधित गाने हैं श्री गणेश से, वो श्रोताओं को सुनवा दे।
2: जरूर।

दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और गहरे होते जाते हैं। साथ निभाने का वादा शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों से पूरा होता है जब हम अपने साथी की खुशी को खुद से पहले रखते हैं। आज हरतालिका तीज है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। उदया तिथि के कारण इस साल ये व्रत 14 सितंबर यानी कि आज के दिन हरतालिका तीज मनाया जा रहा है।

0: मनीष, हमने तो आज तीज के इस पवित्र पर्व का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं को सुना दिया। तो आज वैश्विक स्तर पर 14 सितंबर को नेशनल फूड इज मेडिसिन डे के रूप में भी मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि अच्छा और पौष्टिक भोजन ही सबसे पहली दवा है। हमें अपने भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन, और ज्यादा चीनी, मैदा और पैकेट बंद चीजों से दूरी बनानी चाहिए।
1: 14 सितंबर के आसपास के दिनों में कई बड़े स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कुपोषण जागरूकता सप्ताह, फंगल डिजीज अवेयरनेस वीक। और अब हम पर्यटन की बात कर लें तो झारखंड की राजधानी रांची एक खूबसूरत शहर है। यहाँ घूमने की कई शानदार जगह है जहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। रांची में आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा और यादगार समय बिता सकते हैं। रांची प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ शहर है। यहाँ आपको झरने, पहाड़ियाँ, जूलॉजिकल पार्क और भव्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। रांची झारखंड की राजधानी और एक स्मार्ट सिटी होने के साथ राज्य की विरासत और संस्कृति को भी समेटे हुए है। रांची में आप बिहार के स्पेशल व्यंजनों के साथ चाइनीज, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन खाने का भी स्वाद ले सकते हैं। फिलहाल आज हम अपने श्रोताओं को रांची के आसपास के एक पर्यटन स्थल के बारे में बता दें, मैकलुस्कीगंज, जहाँ एक छोटा पहाड़ी कस्बा है जो राज्य की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में एंग्लो इंडियन समुदाय रहता था। मैकलुस्कीगंज में ब्रिटिश ग्रामीण शैली में बने लगभग 300 बंगले हैं, जिसे आज सुंदर गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और आज ये घूमने के लिए खूबसूरत जगह बन गया है।
0: जी हाँ मनीष, ये मैकलुस्कीगंज की बात हमने तो श्रोताओं को बता दी, और एक प्यारा सा जो जगह है जिसे हम नेत्रहाट कहते हैं, सभी लोग जानते हैं श्रोताओं कि नेत्रहाट नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, यानी प्रकृति का हृदय। और यह एक छोटा सा स्थान है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और यह एक हिल स्टेशन है, यहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं।
1: और इसके साथ ही हम बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी अपने श्रोताओं को बता दें कि ये रांची के सबसे नज़दीक स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और शहर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ बंगाल टाइगर के साथ साथ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत दुर्लभ है। यहाँ हाथी, बाइसन, हिरण, जंगली सुअर, बारहसिंगा इत्यादि जानवर आसानी से देखे जा सकते हैं।
0: जी हाँ मनीष, इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कभी हमें जाने का मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: खेल की बातें किए बिना ये कार्यक्रम थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो हम थोड़ा खेल जगत की ओर भी देख लें।
1: जी हाँ बिल्कुल मनीष।
0: खेल इतिहास में 14 सितंबर की तारीख कई महत्वपूर्ण और यादगार घटनाओं की गवाह रही है, और इस दिन खेल जगत में कई बड़े रिकॉर्ड भी बने और टूटे हैं। 14 सितंबर यानी आज ही के दिन भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। 2009 ईस्वी में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी हुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने दिग्गज सेजर फेडरर के लगातार 5 साल के दबदबे को तोड़ते हुए यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता था।
1: जी हाँ, और आज ही के दिन टिम मॉन्टगोमरी जो कि अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने एथलीट में 100 मीटर की दौड़ लगभग 9.78 सेकंड पर पूरा कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो एक गीत है खिलाड़ियों के नाम।

0: गए एक कदम पीछे।
1: अरे बैठ।
0: झूम के पीछे घूम और नच दे भाली, लोग बजाएंगे खुश होकर।

0: मनीष, हमने तो खेल की दुनिया की बातें कर ली, अब आते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या चीजें घटनाएं हुई थी 14 सितंबर को। तो मनीष, मैं ये बता देना चाहती हूँ श्रोताओं को कि 14 सितंबर 2012 में वैश्विक स्तर पर भारत के महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर किए गए ऐतिहासिक कार्यों को प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन के रूप में मान्यता दी गई थी।
1: और 1936 ईस्वी में अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पहली बार फ्री फ्रंटल लोबोटॉमी शुरू की गई। और अगर किसान भाई अपने फसलों को लेकर अगर चिंतित होते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब फोटो खींचकर फसलों की सेहत सुधारेगा रोबो डॉग। और वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबो डॉग बनाया है जो फसलों के करीब से देखकर उसकी हालत का पता लगा लेगा। ये चार पैरों वाला रोबोट खेतों में जाकर पौधों का रियल टाइम डाटा इकट्ठा करता है। ब्रिटेन के नॉटिंघम विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया गया है इसे, और इसमें पौधों की 3D तस्वीरें लेने के कैमरे के साथ ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी है। इससे ये पौधों की पत्तियों तक की बारीक जानकारी हासिल करता है। इससे खरपतवार और फसल के दूसरे खतरों का पहले से ही किसानों और कृषि विशेषज्ञों को पता चल जाता है। ये खेत में फसलों की कतार के बीच आसानी से चल सकता है। ये चलते समय मिट्टी को भी कम से कम प्रभावित करता है। एक बार चार्ज होने के बाद इसकी बैटरी करीब 4 घंटे तक काम कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में खेती में ऐसे रोबोट का इस्तेमाल बढ़ सकता है। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है सिल्वा, और विज्ञान इसी तरह से उन्नति करता रहे और आम जन को इसका फायदा मिलता रहे।
0: जी बिल्कुल मनीष, और ये जो आपने सही जानकारी अभी श्रोताओं को दी फसल के बारे में, तो इसे कहा जाता है कि जिंदगी और भी खुशनुमा बनती है, और जिंदगी में प्यार होते रहता है और प्यार एक नगमा के रूप में उभर कर सामने आता है। तो एक प्यारा सा गीत श्रोताओं के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम आपकी पसंद थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आपकी पसंद में श्रोताओं, हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जो सुनना चाहते हैं, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन कुमार, सुमन कुमार ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर और छत्तीसगढ़।

भाटा पारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। आपने सुनना चाहा है फिल्म शतरंज का ये गाना, और शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन अनु मलिक के हैं, और गीत उदित नारायण और साधना सरगम के।

अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। सुनने के ख्वाहिशमंद है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, लेबई से गुलाबदास मणिकपुरिक और दंतरेगी से भागवत वर्मा। आप लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये प्यारा सा गीत। जतिन ललित के संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के गीत और आवाज कुमार सानू के।

अगली फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से। सुनना चाह है आपने फिल्म नराज का ये गीत। संगीत अनु मलिक के है, गीत क्वातिल सिफाई के और आवाज़ कुमार सानू के, और सुनने के ख्वाहिशमंद है श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। हरदेव मीका बलविंदर बीरक जैतेक बीरक मीका बीरक। आपने सुनना चाहा है फिल्म गाइड का ये गाना। गीत शैलेंद्र के है, संगीत आर डी बर्मन के, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अगली फरमाइश आई है औरंगाबाद से, सुनने की ख्वाहिशमंद है राजेश सबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आपने सुनना चाहे फिल्म ज्वेल थीप का यह प्यारा सा गीत, मजरू सुल्तानपुरी के गीत है, एस टी वर्मन के संगीत और आवाज किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गृह लक्ष्मी नागपुरी भाषा पे, और यहाँ पे हमारे साथ आई हुई है वंदना राय और सुभाषिनी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया सब बहिन मन के वन्ना बटले जोहार और सुभाषिनी बहिन और कोहो जोहार असरा करीला की हमरे कर सब सुनवैया बहिन मन कुशल मंगल से होबे और बहिन मन के संग हैं हिंदी दिवस गणेश चतुर्थी और तीज कर बहुत बहुत शुभकामना।
1: हाँ वंदना बहिन, सब गृहलक्ष्मी सुनवैया बहिन मन बेसे बेस जरूर हो बाए और एखन तो अपन मनपसंद कार्यक्रम सुनत हो बाए, तो सब बहिन मन के सुभाषिनी बटले हो जोहार।
0: ये बात एकदम सही कहली सुभाषिनी कि सब बहिन मन अपन कार्यक्रम के जरूर सुनत हो बाए और इंतजार करत हो बाए कि आज हमरे का चर्चा करब। तो चर्चा तो हमरे करब, लेकिन उकर से पहले गोटा गृहलक्ष्मी परिवार बटले सबके हिंदी दिवस कर फिर से शुभकामना और
1: संगे संगे गणेश चतुर्थी और तीज कर भी बहुत बहुत शुभकामना। तो बंदना बहिन, आज तो है हिंदी दिवस है ने, और महत्वपूर्ण दिन कर शुरुआत हो रहे जखन 1949 में संविधान सभा ये निर्णय ले रहे कि हिंदी केंद्र सरकार कर आधिकारिक भाषा होगी।
0: एकदम सही कह ली, और देखो नहीं हमारे मन

0: देखेला कि भाषा जे होवेला से मनुष्य कर विचार भावना और संस्कृति के दिखाएला और सबसे बड़ और जरूरी माध्यम भाषा है एक दूसरे से जुड़ कर। हमरे कर जो भाषा है वो हमरे कर पहचान से जुड़ल होवेला। राष्ट्रभाषा है जननी सम्मान, सदा करें इसका सम्मान। ये जो पंक्ति है वो हमरे के अपन भाषा बटे प्रेम सम्मान और जिम्मेदारी कर संदेश देवेला।
1: हाँ एकदम सही कहा थी। और बंदा बहन जे हमरे कर भाषा है नी जे वो हमरे के जैसन माय लखे है, जैसन हमरे कर माय जे रहे नी कि वो हमरे के जन्म देवेला और संस्कार भी देवेला और हमरे कर संस्कृति से भी परिचय करायला। तो सहेले रावरे बहुत बेस कहली कि हिंदी खाली अक्षर और शब्द मनक जमावड़ा नखे बल्कि ई गोटा भारतवासी मन के जोड़े वाला एगो डोरी है जे लखे हमरे अपन माय कर ठाव के दोसर के नी दे सकीला। ओहे लखे अपन मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के ठाव भी सबसे ऊपरे होवे चाहिए।
0: एकदम सही कहली सुभाषिनी बहन। और हमरे कर जे देश है भारत वो तरह तरह कर भाषा और बोली वाला देश है कि हमरे मन जानवे करीला। हिंदी गोटा देश में बहुत व्यापक रूप से बोलल जाएला और समझल भी जाएला और ये हमरे के साहित्य शिक्षा संचार और जनजीवन में बहुत पूर्ण भूमिका भी निभाएला। हिंदी भाषा अगर चलते अलग अलग क्षेत्र में आदमी मन आपस में संवाद करे पा रहे ना। और चलो हमरे मन जानब कि भाषा जे है से जननी कर सम्मान कैसे होवेला। जैसे कि एगो माय अपन छोवा के रौरे कहली एखने है कि एगो माय अपन छोवा के संस्कार प्रेम और जिंदगी कर मूल्य के उकर से जोड़ेला। उसने है हमरे कर जे भाषा है वो हमरे के संस्कृति परंपरा इतिहास और सामाजिक मूल्य से जोड़ेला। और हमरे मन अपन सुख दुख भावना और विचार के भाषा कर माध्यम से व्यक्त करीला। सेले हमरे के अपन भाषा कर सम्मान करे कर बहुत दरकार है।
1: बहुत बेस बात कहली। और जैसे कि हिंदी कर कोरा में देखल जाए तो कबीर कर ज्ञान, तुलसी कर भक्ति, प्रेमचंद कर जन जीवन और दिनकर कर ओज पोसाए है। और विशेष बात ई है कि समय कर संगे संगे दोसर भाषा मनक शब्द के भी हंसते हंसते अपना लग हिंदी। आज विज्ञान तकनीक और डिजिटल माध्यम मन में भी हिंदी जे लखे आगे बढ़त है वो ई बात कर साबित करेला कि हमरे कर राष्ट्रभाषा गुणवान भी है और आधुनिक भी है।
0: एकदम सही कहली बहन। और देखो नी हिंदी साहित्य कर परंपरा जैसे बहुते समृद्ध है। एखन रौरे बताली कि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और अनेक साहित्यकार मन है जे हिंदी के समृद्ध बना ले। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता और सिनेमा कर माध्यम से हिंदी समाज के जागरूक करे और आदमी के एक दूसरे से जोड़े में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे है।
1: एकदम सही कहली बंदा बहन।
0: राष्ट्रभाषा है जननी कर सम्मान और हमरे मन के जरूर कर
1: सम्मान चाहिए। तो हिंदी भाषा खाली संवाद कर माध्यम नखे बल्कि हमरे कर सांस्कृतिक धरोहर है जे हमरे बात कर रही। तो सहेले दुनिया कर दोसर भाषा मन के ज्ञान बढ़ाए के लिए सीखे तो चाहिए, दोसर औरो भाषा मन के सीखे चाहिए, लेकिन अपन भाषा के भुलाए के नहीं चाहिए। काले कि अपन भाषा के भुलाना अपन पहचान के भुलाए के लखे है।
0: एकदम सही कहली बहन कि भाषा कर जे पहचान है वो हमरे कर पहचान है कहू तो। तो चलो हमरे मन इकर बादे सुनब एगो नागपुरी लोकगीत रुना देवी और संगी मन कर गावल।

0: देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले? आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख?
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये रहे विज्ञापन संदेश। रुकर से पहले हमरे मन सुन ले नागपुरी लोकगीत रुना देवी और संगी मन कर गावल। तो चलो सुभाषिनी, कार्यक्रम के हमरे मन आगे बढ़ाईला और नागपुरी साहित्य में आज हमरे मन जानब नागपुरी कर कुछ पुरना कवि मन कर बारे में। तो ई कड़ी में हमरे मन आज जानब कवि अनूप राय और बरजू राम कर जीवन गाथा।
9: हाँ, नागपुरी काव्य जगत में कई गो महान कवि कर नाव में अनूप राय का नाव आदर कर संगे लेल जायला। इनकर रचना इंद्रनाथ उप नाव से भी मिलेला।
8: कवि अनूप राय कर जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष संवत 1917 के होए रहे। इनकर जन्म और सेवा स्थल है गांव सकरा मांडर रांची। मूलतः ई गोविंदपुर जड़ियागढ़ खूंटी कर प्रबंधक रहे और इनकर बाबा कर नाम रहे सूरज राय।
9: कवि अनूप राय कर रचना में रामायण कर प्रसंग, श्रवण चरित्र, फूल चरित्र, सत्यनारायण कथा, 12 मासा चित्रण, ज्योतिष विज्ञान आदि विषय प्रमुख रहे।
8: राम श्रवण कर कथा दोसर कवि मन कर नियर अनूप राय कर काव्य में प्रकृति कर कोमल, मधुर और सुंदर पक्ष विशेष रूप से उभर गया है। 12 मासा कर चित्रण में उनकर बहुत गहरा रुचि रहे। श्रृंगार वर्णन, नख शिक्ष चित्रण में नूतन कर संगे पारंपरिक बिंब कर प्रमुखता है। जैसे कि एगो उनकर गीत है, चंद्र बदनी मृग लोचनी चंपा ऐसो गीत, किमी कारण है लालली भयो डुमरी अस फूल जात। तो इस पंक्ति में कवि अनूप राय लाल और सूजल आंख कर अभिव्यक्ति डुमर कर पाकल फूल कर संगे गैर है, यह इनकर कल्पना कर अनोखापन है। चैत मास चित चंचल भयो कानन फूले निवारी, वैशाख मास दुपहरिया बिनु पति मम जीवहारी, रही बिजोर अकेले घर कासे करो उमंग, ज्येष्ठ मास पहे ग्रीष्म ऋतु अवनि तपे रवि तेज, बोर अनार तर बैठ रही पियु बन भावे न सेज, भय असार नभ घेरे रूप मंजरी सुनु बात, अम्बा फसपल मधुर मृदु पियु बिनु नाही सुहात, सावन बरसे समान बूंद में ही जल लागल बाल। तो परदेश चावल बर कर बिना खुशी कैसे चल जाएला, इकर बड़ा मार्मिक चित्रण अनूप राय अपनी रचना में कर है। और बिछड़ नायिका हरेक मास कैसन अवस्था से गुजरत है, उकर ऊपर मौसम कर प्रभाव कैसन पड़त है, इस स्थिति कर वर्णन कवि अनूप राय कर सोच और उकर कला दियो में देखल जाए सकेला।
9: बहुत बढ़िया कविता मन लिख है। और ओहे लखे नागपुरी कवि
8: बरजू राम कर बारे में भी हमरे मन एखन चर्चा करब, लेकिन उकर से पहले हमरे मन सुन लेवेला एगो नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मन कर गावल।

0: तो सुनवैया बहिन मन एखन हमरे मन सुनले नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल। तो चलो सुभाषिनी बहिन कार्यक्रम के हमरे मन फिर से आगे बढ़ाईला और नागपुरी साहित्य कर ई कड़ी में हमरे मन जानब कवि बरजू राम कर विषय में।
1: हाँ, तो बहिन मन इनकर पूरा नाम बरजू राम पाठक है। इनका रचना काल 1800 से 1850 मानल जायला। इनकर जीवन काल में ऐसन घटना घट रहे कि उकर वर्णन रचना मन में मिलेला। बरजू राम और कवि हनुमान सिंह दुयो समकालीन रहे। दुयो कवि कर बीचे संगीत युद्ध फगुआ पुछारी राग में होय रहे। पहला धाव बरजू राम कर जीत होलक और दुयो कर उम्र एके बता जायला।
0: हनुमान सिंह कर जन्म 1765 के ठहरेला और बरजू राम के उनकर समवयसी मानल जायला। बरजू राम गुमला जिला कर घाघरा थाना अंतर्गत हापा मुनि गांव कर निवासी रहे और महामाया मंदिर हापा मुनि कर पुजारी भी रहे। इनकर काव्य कर विषय श्री भगवत गीता रामायण महाभारत कर प्रसंग है। इनकर ऊपरे अनगिनत गीत होवे कर प्रमाण भी मिलेला। बरजू राम कर रचना करल लड़का खंडगीत जे कि कोल विद्रोह 1831 से 1832 कर ऊपरे आधारित है। हापा मुनि मंदिर कर पुजारी होवे के चलते बरजू राम हापा मुनि मंदिर आख्यान भी लिखे हैं। बरजू राम हनुमान सिंह कर नियर फगुआ पुछारी गीत कर संगीतकार रहे।
1: तबे हनुमान सिंह संगीत युद्ध में जखन बरजू राम से हार गेले तो अपन समूचा 1,00,000 फगुआ पुछारी गीत गंगा में बहाय दिले। 1,00,000 के आइक के दे दिले और संगीत कर कठिन मेहनत परिश्रम से बरजू राम के उ हराय पाए रहे।
0: पुछारी गीत संगीत युद्ध चपका घाघरा में करल जा रहे ऐसा अनुमान लगाल जायला। चपका कर वर्णन उनकर रचना मन में भी मिलेला। जैसे कि ये रचना है, चपका से चलल बरात उर हरकत गे सजनी प्रथम गुटुआ डेरा जायक बुजुन बेरा।
1: और एगो लाइन है, प्रथम कोकिला लंखाल जीव डरपत गे सजनी पहुंचे को रामबे खास जहां महाप्रभु वास। ओहे लखे इति दुल्हा आगे अगुआत जीव धरकत गे सजनी चपका कलेवा इसिको चीटी खुखरा में बूंद छठी।
0: ये रचना है उकर में चपका गांव से लेके मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची कर बारात यात्रा कर वर्णन करल जाए है। और बारात चपका से चलते चलते गुटना गांव में ठहरलक, फिर कोकिला गांव पार करके कोरांबे पहुंचलक जहां महाप्रभु वासुदेव राय कर भव्य मंदिर है। झिकोकटी गांव में बराती मने कलवा खाले खुखरा पहुंच के जोर से पानी पड़े लागलक जेकर में नदी नाला भर जा रहे और बड़ा मुश्किल से बराती मन बोड़िया कर मदन मोहन मंदिर में पहुंचे पार ले। दर्शन करल बादे बिया

0: द्विजनाथ द्विज करा लें, जेकि मंत्र पढ़े कर जगह में रेकत रहे। बरात में लानल बर्रा बर्बाद भी हो जाए रहे।
1: हाँ।
0: बरजू राम का रचल गीत मनक संख्या 18,000 बता जाएला। इनकर गीत मन में सदानी भाषा साहित्य संस्कृति और कला दिसेला। इनकर रचना मन में छोटा नागपुर कर संपन्नता विविधता गहराई भी देखे के मिलेला।
1: नभ रस बसु ससी प्रचंड चलत पंथ लागत बंड, बरखा नहीं करे संवत 60 साल भेल अकाल काल। कैसे तरे हो बहुत जीव अन बिन मरे, असुबे जोग जग के हाल, उड़त धूरी जग बेहाल, निखरत मही परे।
0: तो सुभाषिनी उपरेकर जी रचना है, उकर में 1803 ईस्वी में झारखंड में जो भयंकर अकाल पड़ रहे हैं, उकर आँख से देखल वर्णन कवि कर रहे हैं। बिना खाना और पानी कर जीवन कैसे अकबकाए जा रहे, और साहू महाजन मन बगरा दाम में चाउर मन के कैसे बिक्री करत रहे। ऐसन में हापा मुनि मंदिर में होप जप भोग सोबे बंद हो जाए रहे।
1: हाँ।
0: माने कि जीव कर संगे संगे महामाया भी ई अकाल कर मार से बाचल नहीं रहे।
1: बहुत सही।
0: तो इकर वर्णन ई रचना में बहुत सुंदर से करल जा है। तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि भाषा शैली हमरे कर व्यक्तित्व कर आयना होवेला।
1: हाँ।
0: जानीला बहिन, भाषा जे होवेला से के बोले या उकर जे शैली होवेला हमरे कर व्यक्तित्व कर आयना होवेला। हमरे समाज में कैसे उठीला कैसे बैठीला, हमरे कर सोच कैसन है और हमरे कर संस्कार कैसन है, ये सब हमरे कर भाषा और बातचीत करे कर तरीका से तुरंत पता चल जाएला। और ऐसन कहल भी जाएला कि वानिय से इंसान कर पहचान होवेला, नहीं तो हर मनुष्य तो एके नियर
1: दिसिला। एकदम सही बात कहती। जखनो कोनोवे व्यक्ति विनर्म आदर सूचक और मधुर भाषा कर प्रयोग करेला तो वो अच्छा संस्कार और पारिवारिक परिवेश के दिखाएला। इकरे विपरीत अपशब्द भाखा कर उपयोग होएला तो उकर बढ़िया संस्कार और पारिवारिक परिवेश के दिखाएला।
0: और जानीला हमरे कर सोच जैसन होवे लनी उसने हमरे कर शब्द भी मुंह से निकलेला।
1: हाँ, सही कहा।
0: सही शब्द कर चयन, बोले कर लहजा और ठहराव कोनवे आदमी के भीतरे जे आत्मविश्वास है से के दिखाएला। एगो सुंदर भाषा शैली जे होवेला से आदमी मन के दोसर कर भावना के सम्मान करे के भी सिखाएला। उकर बात में सहजता और अपनापन दिसेला, जेकर से की आदमी मन उकर बटे आकर्षित होवेला और उकर से बढ़िया संबंध भी उ बनाए पारेला। सेले कहना की भाषा हमरे कर व्यक्तित्व कर आयना होवेला। तो सुभाषिनी बहिन, समय तो बचले है हमरे कर।
1: हाँ।
0: तो चलो सुनीला और एगो नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: हाँ तो सुनवैया बहन मन, एखन हमरे मन सुनली यशोदा देवी और संगी मनकर गावल ई सुंदर नागपुरी लोकगीत। तो सुभाषिनी बहन, आप तो हमरे कर जाई कर बेरा हो जा है, तो अगला कार्यक्रम में बहन मनकर संगे हमरे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव इजाजत,
1: जोहार।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं सबसे पहले गीत फिल्म ये वादा रहा से। आवाज आशा भोसले की है, गुलशन बावरा के गीत है और आरडी वर्मन के संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म फूल और कांटे से। आवाज कुमार सानू और अनुराधा पुडवाल के हैं, समीर के गीत हैं और नदीम श्रवण के संगीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म घर से, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत गुलजार के, संगीत आर डी वर्मन के।

आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म प्रेम पुजारी से गीत नीरज के हैं, संगीत एस टी वर्मन के, आवाज किशोर कुमार की।

0: श्रोता, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बालिका वधू से। धुन आरडी वर्मन की है, आनंद बख्शी के गीत और आवाज अमित कुमार की।
1: अच्छे लगते हैं
2: क्या?

श्रोताओ, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये आखिरी गीत फिल्म सिलसिला से। शब्द रचना हसन कमाल के हैं, संगीत सिंह हरि के और आवाज किशोर कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग की स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
4: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Home Minister Amit Shah has said BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states. And he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on the 12th and 13th of this month, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of states or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. The government has said the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control due to the relentless efforts of the army. In its latest annual report 2025-26, the Defence Ministry said these efforts have led to a significant decline in violence, a reduction in protests, and zero incidents of stone pelting. According to the report, the situation within Jammu and Kashmir and along the line of control had significantly altered during Operation Sindoor. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over Gujarat for the day. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Punjab, East Rajasthan, Odisha and Bihar till tomorrow. Similar weather conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya during the next 2 days. State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir has said Bangladesh wants to move towards a new relationship with India through bilateral discussions rather than multilateral forums. Speaking to reporters at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka, Mr. Kabir said Bangladesh needs to move beyond what he described as an excessive preoccupation with India and deal with New Delhi on the basis of mutual interests. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has called for stronger health cooperation, innovation, resilience and sustainable financing. In a social media post, Dr. Tedros said, the four themes of the BRICS Leaders Summit are directly relevant to global health. In tennis, Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open, beating American Ben Shelton in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी, युवाओं से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में जनजागरण अभियान चलाने का लिया निर्णय। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की। SIR के तहत दावा आपत्ति की कल अंतिम तिथि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में जुड़ने की अपील की। और राज्य में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव को लेकर बनाए गए कई भव्य पंडाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री शाह ने युवाओं से अपनी मातृभाषा के बारे में जानने और घर पर बातचीत के दौरान इसका इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
5: युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूँ, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे।
0: राजभाषा दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में भागीदारी का संकल्प लेने की अपील की। मुंडारी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर रांची में मुंडारी भाषा समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें झारखंड समेत 5 राज्यों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मुंडारी भाषा को आदिवासी समाज की अस्मिता, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताते हुए इसके संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए देशव्यापी जनजागरण अभियान और आंदोलन चलाने का सर्वसम्मत संकल्प लिया गया। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को पत्र लिखकर विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में ऐसे प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया है, जिसके तहत विधायकों के साथ जानबूझकर अपमानजनक या अशिष्ट व्यवहार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जा सके। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने एग्रीको स्थित अपने आवास के समीप हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पिता और पुत्र की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों के परिचालन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल नो एंट्री व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और दुर्घटना संभावित इलाकों में सड़क सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की। पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन पासवा की ओर से रांची में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2500 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ उनके भविष्य और देश के अच्छे नागरिक के रूप में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि पासवा ने शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए अभियान जारी रखने की बात कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
6: newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों विशेषकर युवाओं से अनुरोध किया है कि जो अभी भी मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं, वे ECI नेट अथवा BLO से संपर्क कर फॉर्म 6 व घोषणा पत्र अवश्य भरें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावा आपत्ति के लिए कल अंतिम तिथि है।
7: 15 सितंबर सबको आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि है। किसी का नाम SIR में दर्ज करना है, तो किसी के ऊपर में आपत्ति है, आपका बूथ में परिवर्तन चाहिए, आपका नाम में कोई परिवर्तन चाहिए, कुछ सुधार करना है, आपका फॉर्म 8 बनाना है। इसलिए आपका 15 सितंबर तक संबंधित फॉर्म 6, 7, 8 जरूर बना दीजिए, ताकि आपको SIR करना रोल में नाम आना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि SIR का रोल का नाम होती है वो परमानेंट रिकॉर्ड होती है।
6: इधर दुमका जिले में अब तक लगभग 12,500 फॉर्म भरे जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतिम 2 दिनों में फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिक मतदाता सूची से जुड़ सके।
8: दुमका जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह प्रक्रिया 15 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। अब तक जिले में लगभग 12,500 फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिक मतदाता सूची से जुड़ सके। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
6: रांची में आयोजित प्रिवेंट हार्ट समिट 2026 में देश भर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने हृदय रोगों की रोकथाम से लेकर आधुनिक उपचार तक पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन का आयोजन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर की ओर से किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राजेश झा ने जीवन शैली में बदलाव और युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर विशेष चिंता जताई। विशेषज्ञों ने कहा कि आधुनिक हृदय चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी होने के बाद उपचार करना नहीं, बल्कि जोखिम कारकों की पहचान कर बीमारी को रोकना भी है।
9: 300 कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों में हार्ट की डिजीज को रोक सकते हैं डेवलप होने से पहले ही, उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। यंग पॉपुलेशन, जो यंग हार्ट अटैक हो रहा है, उसके ऊपर कैसे उसको रोका जा सके, किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंज करके अदरक हो जा रहा है, तो उसको किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं।
6: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है।

0: कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया संदेश में हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। रांची के खेलगांव स्थित सिद्धुकानू वेलोड्रोम में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग स्टेट लीग 2026 का समापन हुआ। दूसरे दिन कैरन जूनियर में निकिता सोरेंग, एलीट में सबिना कुमारी, परस्यूट जूनियर में शीला बारा और स्क्रैच एलीट में सिंधुलता हेम्ब्रम ने स्वर्ण जीता। लीग में राज्य के 15 जिलों की बालिका और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी। युवाओं से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में जनजागरण अभियान चलाने का लिया निर्णय। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की। SIR के तहत दावा आपत्ति की कल अंतिम तिथि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में जुड़ने की अपील की। और राज्य में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव को लेकर बनाए गए कई भव्य पंडाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। कलाकार है गिरिजा देवी, संगीत के बोल है राग देव गंधार। आइए सुनते हैं यह संगीत।

अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। संगीत में पहला संगीत है मिताली सिंह के और बोल है मेरी सब कोशिशें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। अब हम थोड़ी देर में सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम समाचार सुनेंगे।

0: Slam title throughout her life for American men, though he became the first black American man to make it to a U.S. Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को त्रिकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है।

0: 26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागरूक किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4

0: 90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती। जय भारती में हम आपको सुनवाते हैं सैनिकों के समर्पित में कुछ गाने। तो आइए सुनते हैं फिल्म तेरी मिट्टी का ये गीत। सुर बी प्राक के हैं, गीत मनोज मुतस्सिर के और संगीत आरको के।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम जय भारती में। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म कर्मा का ये गीत सुनते हैं। गीत आनंद बख्शी के हैं, आवाज मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के हैं।

आइए सुनते हैं इस जय भारती कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म बॉर्डर से। इसके संगीतकार हैं अनुप मलिक और गीतकार है जावेद अख्तर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सैनिकों के लिए समर्पित गीत कार्यक्रम जय भारती में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। ब्रिक्स समिट 2026 की सफलता पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को सराहा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के विजन और दिल्ली घोषणा पत्र से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है। सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वसुधैव कुटुंबकम, इतनी बड़ी कूटनीति, आप देखो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ वो अद्भुत था। आतंकवाद के खिलाफ सभी ब्रिक्स के देश एक स्वर में कहा कि जो पहलगांव की निर्मम घटना हुई थी वो घृणित थी, पूरी तरह ये आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार था।
0: ब्रिक्स समिट 2026 पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी रांची में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलनों में बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन देखना होगा कि उन पर कितना अमल होता है। श्री ठाकुर ने उम्मीद जताई कि अगर सरकार कथनी को करनी में बदलेगी तभी देश को इसका वास्तविक फायदा मिलेगा।
2: देखिए, जब भी कोई इस तरह की समिट होती है तो उसके जो बाद बयानात आते हैं उससे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं अगर उस तरह की बातें धरातल तक उतर गई तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन जो पिछला हम लोगों का अनुभव रहा है, प्रधानमंत्री जी बातें ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं, तो वो किस हिस्से में जा रहा है वो तो आने वाला समय बताएगा।
0: में भाजपा नेता सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता की उम्मीदें निराशा में बदल चुकी हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आम जनता बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आंदोलन करने को मजबूर है।
3: अलग राज्य बने तो 26 साल हो गए पूरा, और झारखंड की जो जनता है उपेक्षित रह गए। कई आशाओं के नजरों से सरकार को देखें कि जो आशाएं हैं आशाएं रह गए, जो बदलाव होना था वो बदलाव कहीं नजर नहीं आया। और आज तक डेट में जो हम देख रहे हैं कि जो रफ्तार होनी चाहिए थी पूरे तरह से मतलब घट चुकी है सभी विभागों में।
0: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स FJCCI चुनाव में पलामू के जिला परिषद सदस्य अमित कुमार जायसवाल ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। रांची में हुए इस चुनाव में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को 29 मतों के अंतर से हराया। इस सफलता के बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। JLKM के विधायक जयराम महतो ने राज्य के ईमानदार अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके काम को नमस्कार है, लेकिन जनता के साथ गलत करने वालों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।
4: झारखंड राज्य के लोगों की लड़ाई तीन जगह जाकर दम तोड़ देती है, थाना में, एक अंचल में, एक ब्लॉक में। डीसी और SP तो झारखंड के लोग कभी भी नहीं समझते वो क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा करप्शन तो खैर पूरे राज्य में है, लेकिन जनता जहां से प्रभावित ज्यादा हो रही है तीन जगह है, और वहां शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। तो वहां जो लोग ईमानदार है फिर आपके माध्यम से उनको मेरा नमस्कार रहेगा, लेकिन जो लोग वहां बैठकर संवैधानिक पदों पर बैठकर अगर जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो अब उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की हो रही अनदेखी पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पाकुड़ में पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के तलबा डांगा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1900 अवैध लॉटरी टिकट और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची में एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि और नामकुम स्थित संस्थान के पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. अंजेश कुमार ने विश्व पटल पर हिंदी बढ़ता दायरा बढ़ता प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मौके पर केंद्र प्रमुख DC हेम्ब्रम सहित आकाशवाणी के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। राज्य में आज हरतालिका तीज भी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं बैगनी जोजो और मरियम मोंटेसरी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। बटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप संदेश के लिए। और अब हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के आविष्कारक राइस ने। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था,

0: देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे, गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन

0: पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
1: जब वो मात्र 4 वर्ष की थीं, उनका परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थीं।
0: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
0: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया।
1: बहुत बहुत बधाई हो।
3: धन्यवाद।
1: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
2: बहुत बहुत बधाई हो।
1: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
0: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
2: आइए मारिया जी।
3: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ?
2: जी
3: आप कुछ उदास लग रहे हो।
2: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
3: और बुरी?
2: जी।
3: अब भला वो कैसे?
2: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
3: हाँ हाँ जरूर।
2: जी
0: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
2: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
3: गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
0: बाल गृह से बाहर

0: और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
1: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
2: मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
0: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: '08 की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने

0: शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
1: जी,
0: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
1: जी जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
3: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
2: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
3: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
2: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
3: मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
2: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
4: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। का पहला गीत फिल्म देश परदेश से, गीत अमित खन्ना के है, राजेश के साथ।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म तेरी कसम से आनंद बख्शी के गीत है, संगीत आर डी वर्मन के और आवाज अमित कुमार की।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दिल क्या करे से। गीत आनंद बख्शी के हैं, जतिन ललित के धुन है, स्वर अलका याग्निक के।

है सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी से। गीत आनंद बख्शी के है, आवाज़ कुमार शानू और लता मंगेशकर की, धुन जतिन ललित के।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी, जी।
0: हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म ब्लैकमेल से। शब्द रचना राजेंद्र किशन के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी के, आवाज किशोर कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रांची मेलोडीज, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा और एनडीए समर्थित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यूजीसी लागू करने की बात कही है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि तीन तलाक की समाप्ति के बाद अब इन राज्यों में यूसीसी भी समय सीमा से पहले प्रभावी कर दी जाएगी। खान एवं खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2026 के कानूनी रूप लेने से झारखंड को बड़ा झटका लगा है। इस नए कानून के बाद केंद्र पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला रॉयल्टी बकाया दावा समाप्त हो गया है। साथ ही राज्य अब खनिजों पर कोई सेस भी नहीं लगा पाएगा। इस दोहरी क्षति के खिलाफ अब हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर आभार जताया। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत ने इसे छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति सेवा और संकल्प का बड़ा अवसर बताया है। गणेश उत्सव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पहुंचकर भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने आरती कर राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। दोनों नेताओं ने देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स FJCCI चुनाव में पलामू के जिला परिषद अध्यक्ष अमित कुमार जायसवाल ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। रांची में हुए इस चुनाव में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को 29 मतों के अंतर से हराया और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा रांची में हिंदी दिवस पर विशेष व्याख्यान तथा काव्य पाठ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभागीय सचिव प्रवीण टुप्पो ने कहा कि सुशासन की असली पहचान सरल हिंदी, सुगम प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, आओ साथ चले। चर्चा का विषय है आत्मसमर्पण कर रही सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ ले रहे एक भाई से और वर्तमान नक्सल समस्या पर। भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा की है, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु सरन की।

0: कार्यक्रम माव साचल्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की हम सफर सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज उग्रवाद जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इससे निपटने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक योजनाओं को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। तो श्रोताओं, इस हेतु आमजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज अपने गांवों में लोगों के सुख दुख में भाग लें, उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर रहने के लाभ के बारे में समझाएं, आपस में समस्याओं का आदान प्रदान कर इसका निदान ढूंढें, प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं ताकि लोग आपस में अपनी बातों को साझा कर लाभ उठा सकें। आज जो भाई बहन समाज की मुख्यधारा से भटक कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और विभिन्न समस्याओं और यातनाओं को झेल रहे हैं, उनके लिए हमारे सरकार द्वारा समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण नीति बनाकर एवं कई लाभकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका अपेक्षित परिणाम देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग वापस आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के हमारे आओ साथ चलें कार्यक्रम में हमारी बातचीत ऐसे ही एक व्यक्ति से हो रही है। नाम बताइए।
1: अजय राम।
0: अजय किस गांव के रहने वाले
1: हैं? उन्हें है।
0: उन्हें है? हाँ। किस जिले में पड़ता है?
1: लोहरदगा जिले में पड़ता है।
0: पोस्ट
1: पिसरार।
0: पोस्ट पिसरार। तो पिसरार में कब से आप रह रहे हैं?
1: जी मैम, वो तो स्थानीय है, तो क्या बोले, जब से जन्म हुआ है तब से
0: रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या उम्र हुई होगी आपके?
1: 19।
0: और परिवार में कितने लोग हैं?
1: परिवार में हम लोग चार भाई होते हैं और दो बहन।
0: अच्छा।
1: और मम्मी पापा हैं।
0: मम्मी पापा हैं। क्या काम कर रहे हैं मम्मी पापा?
1: कुछ नहीं, घर में है, पापा डेट कर गए हैं, मम्मी भाई और सब ऐसे ही घर में।
0: तो आप अपने परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़े हैं?
1: नहीं, सबसे छोटा।
0: सबसे छोटे
1: जी मैं।
0: तो बाकी जो बड़े भाई बहन है वो लोग क्या कर रहे हैं?
1: कुछ नहीं, बहन लोग को सबको सभी शादी हो गए हैं और भैया लोग शादी करके अभी ऐसे ही घर में।
0: भैया लोग भी घर में?
1: हाँ।
0: तो कुछ तो काम कर रहे होंगे ना? बोलो।
1: कुछ नहीं मैम, घर में क्या काम, कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करता है।
0: तो खेती बाड़ी से कुछ पैसे आ रहे हैं?
1: नहीं मैम, केवल खाने के।
0: घर के लिए?
1: घर के लिए।
0: अच्छा, तो कैसे परिवार चल रहा है?
1: चल रहा है जैसे तैसे, क्या कीजिएगा, कुछ काम धंधा है ये नहीं तो क्या करेंगे।
0: तो काम धंधा तो ढूंढने से जरूर मिलेगा।
1: मिलेगा, पर उस इलाका में वैसा काम ही लेना है मैम।
0: तो खेती बाड़ी सिर्फ अपने घर भर के लिए अनाज उगा रहे हैं और ज्यादा नहीं?
1: नहीं मैम, केवल घर के लिए।
0: अच्छा, तो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है?
1: ये यही नक्सली वाला, वही सिरिंगदाग थाना अंतर्गत जो तुरियाडी गाँव था ना, वही गाड़ी जलाया हुआ था, वही वाला केस चल रहा है।
0: आपने जलाया था?
1: जी मैम, नहीं जलाए थे।
0: नहीं? तो आप तो बेकस हो रहे हैं।
1: जी मैम।
0: आपका ये हो गया पूरा?
1: जी मैम, अभी अथी हुआ था, तारीख जा रहे हैं।
0: तो अभी तारीख ही चल रही है?
1: जी मैम, तारीख चल रही है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है।
0: तो क्या उम्मीद करते हैं आप, कैसे कैसे ये समाप्त हो जाएगा जल्द से जल्द?
1: जी मैम, जल्द से जल्द कर देते ठीक है। मान लेते हो घर में तो हम लोग तरफ कोई साधन नहीं ना है, कोई बिजनेस नहीं है, तो
0: अगर मान लीजिए कि केस खत्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे?
1: माने
0: कहाँ जाना चाहते हैं?
1: हरियाणा वगैरह तो, तमिलनाडु कहीं, कोई गुजरात।
0: यहाँ झारखंड में आपको नहीं मिलेगा कुछ?
1: जी मैम, यहाँ रह कर
0: है ना, और हम चाहेंगे कि हमारे वो हमारे झारखंड को छोड़कर ना जाए। तो आप भी
1: अच्छा सरेंडर करने के बाद केस हुआ, केस था तो जेल गए, जेल से निकल कर फिर वही गाड़ी चला रहे हैं और उसे कुछ नहीं।
0: तो मैं फिर तो रोजगार मिलने की बात है आत्मनिर्भर करने की, तो रोजगार के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया?
1: जी मैम प्रयास तो किए थे, लिखाए वगैरह थे, तो उसमें तो कुछ अभी तक नहीं इधर से पता
0: है। समस्याएं झेल रहे हैं, आपने भी तो समस्याएं जरूर झेली होंगी वहाँ पर।
1: जी मैम।
0: किस तरह की समस्या हो रही है, परेशानी क्या आ रही है?
1: जी मैम परेशानी हो रही थी जब वहाँ था, पर जब इधर से फोर्स लोग जाते थे उस समय दिक्कत हो रही थी, और कुछ बहुत तो सामान ढोना ऐसा
0: तो जाता था तो क्या दिक्कत होती?
1: खाने के लिए नहीं मिल पाता था।
0: फोर्स जाने से आपका खाना क्यों बंद हो जाएगा?
1: क्योंकि मैं हम लोग उतना वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चारों ओर से घेराबंदी अभियान छेड़ता था, तो उसके बाद कुछ चावल दाल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, तो ही इसी चलते खाना पीना का दिक्कत होता था आने जाने के लिए इधर उधर,
0: तो परेशानी आती।
1: जी मैम।
0: तो अभी भी तो आपके साथ जो साथी वहाँ थे, अभी सबकी वापसी हो गई कि अभी कुछ लोग वहीं हैं?
1: जी मैम हमको तो उतना मालूम नहीं है, बहुत दिन के बाद।
0: लेकिन थे ना वहाँ?
1: हाँ रहने के लिए तो बहुत लड़का लोग थे।
0: तो अगर अभी भी वहाँ भटक रहे हैं लोग, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ वापस आने के लिए, उनको आप कुछ संदेश देंगे?
1: जी मैम किसी ने वहाँ रहने से हम लोग को कोई फायदा नहीं, अगर यहाँ आने के बाद अपना विकास अच्छा से घर में रह करके अपना विकास आगे बढ़े, यही हम कहना चाहेंगे। वहाँ रहने से कब क्या होंगे नहीं होंगे वो कोई गारंटी नहीं।
0: तो वहाँ तो डर के माहौल में आप रह रहे थे, आपको डर भी था कि कब आप मारे जाएंगे या कोई इधर उधर भाग रहे थे। अब कोई इस तरह का डर
1: अभी तो नहीं है मैम, अभी तो
0: आराम से आप अपने गांव जाते हैं, फिर इधर उधर घूमते हैं।
1: जी मैम। जी मैम।
0: और एकदम भय मुक्त होके, कोई डर नहीं है?
1: जी मैम।
0: सब से मिलजुल भी रहे हैं?
1: जी मैम।
0: है ना?
1: जी।
0: तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अभी तो अच्छा लग रहा है।
0: खाने पीने में परेशानी?
1: कोई परेशानी नहीं, यही कुछ
0: घर परिवार के साथ रह रहे हैं।
1: घर परिवार के साथ रहे, और अभी तारीख केस चल रहा है, तो अभी मतलब कुछ हम लोग के लिए मतलब इधर उधर जाने के लिए मतलब कोई विकास नहीं।
0: जंगल में आप भटक रहे थे, वहाँ तो परिवार था नहीं?
1: नहीं नहीं था।
0: परिवार वालों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको?
1: जी मैम अभी तो परिवार वालों से हमको अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हमसे भी उन लोगों को अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छा से मिलजुल के कमा खा रहे हैं, चलो किसी तरह आगे कह करके, तो माँ भाभी सब परिवार है ठीक।
0: चलिए तो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, साथ साथ अपना भी, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, सुरक्षा चाहे वह हमारे देश की हो, राज्य, समाज या फिर खुद की, बेहद जरूरी है। सुरक्षा दुरुस्त तभी रह सकती है जब प्रशासन चुस्त और सजग हो, लेकिन साथ ही साथ आम जन की सजगता भी सुरक्षा हेतु उतनी ही जरूरी है। श्रोताओं, हमारे यहाँ उग्रवाद की भी गंभीर समस्या है, इसे दूर करने एवं स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमारे प्रशासन की अहम भूमिका है। श्रोताओं, सुरक्षा और भटकाओ, इन्हीं विषयों पर हमारी बातें हो रही हैं एसपी श्री आशुतोष शेखर सर से, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार सिंधु जी, और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत आभार।
0: सर, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि एक समस्या जिसे हम नक्सलवाद के रूप में जानते हैं, वो चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। इस समस्या से निपटने के लिए, या कहें कि इस ओर जो अभियान प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं, वो किस तरह के?
2: वर्तमान में विशेषकर मैं बता क्षेत्र हैं, उसमें विशेष जो लोग कर हथियार का सहारा लेकर सरकार और सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, उनका लोग फ्रॉम दूसरा पहलू है इस अभियान में, और तीसरा अगर हम लोग तो विकास प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में उनको वहां तक पहुंचाना, जिसमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, इनको वहां तक पहुंचाना, और इसमें पुलिस की तरफ से जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सहायता प्रदान की जा सकती है वो करवाना। तो मुख्य रूप से ये तीन एस्पेक्ट्स हैं जो इस अभियान के, जो नक्सलवाद के विरोध में हम लोग चला रहे हैं।
0: सर, आम जन उन्हें कैसे पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति नक्सल के जो इससे प्रभावित है?
2: मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो बहुत कम आज की डेट में उनकी संख्या रह गई है
0: जी।
2: बहुत ही सीमित क्षेत्र में कुछ प्रभाव उनका देखा जा रहा है, तो आम जनों के लिए ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बट उन क्षेत्रों में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पे इनका प्रभाव हम लोग कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है, उनमें हम लोग जागरूकता अभियान के तहत भी और लगातार जो अभियान हम लोग चलाते हैं उसमें भी जाके लोगों को इनके बारे में जागृत करते हैं, इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, इसके बारे में उनकी समझ रहे, और वो जो नए लोग हैं और जो वर्तमान में मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं वो भटककर नक्सलवाद के साथ नहीं चले जाएं।
0: सर, आप ऐसे से इन लोगों को देखा है तो आप कि आपको लगती है
2: अलग अलग केसेस में अलग अलग कारण रहे हैं, बट जो मूल रूप से कारण दिखाई देता है, एक तो कि उन क्षेत्रों में जब ये लोग मुख्यधारा से भट गए तब विकास की कमी थी, विकास की जो योजनाएं थी वो शायद वहां तक पहुंचने में उनका पूरा लाभ उनको मिलने में कुछ परेशानी होती थी, साथ ही कुछ पारिवारिक विवाद के भी केसेस रहे हैं जिसकी वजह से लोग भटककर नक्सलवाद में चले गए, साथ ही उन क्षेत्रों में गांव के स्तर पे कुछ ऐसे जो इनके आपस के हम लोग कह सकते हैं अग्रज रहे, गांव के अग्रज जो पहले से प्रभावित थे उन लोगों ने और लोगों को प्रभावित कर जो नए कुछ लोग भटक के गए उनको जोड़ने का प्रयास किया, तो मुख्य रूप से यही कारण रहे हैं, ज्यादातर पारिवारिक विवाद के कारण कि कभी किसी की आपस में अपने भाई से लड़ाई हो गई या अपने गोतिया से लड़ाई हो गई और उसकी वजह से वो भटक के चला गया, तो मुख्य रूप से ऐसे ही कारण और ऐसे ही दृष्टांत सामने आए।
0: सर, ऐसे भाई बहन जो जंगलों में अभी भी भटक रहे हैं और मुख्य धारा में वापस नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों से इस समस्या से निकलने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं अपनी ओर से और उनको पुनः हथियार का सहारा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए अनुरोध करूंगा। वर्तमान में जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति है वो बहुत ही आकर्षक है, उसमें विभिन्न तरह के आर्थिक एवं अन्य लाभ उस परिवार को दिए जाते हैं, तो जो कष्टदायक जीवन ये वर्तमान में अभी व्यतीत कर रहे हैं जंगलों में भटककर, मुख्य धारा में आने से कम ये अपने पारिवारिक जीवन का, अपने सामाजिक जीवन का सुख ले सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से और सब भी श्रोताओं के माध्यम से भी फिर से उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी जो वर्तमान में पोजीशन है, हथियार का सहारा लेकर जो वो काम कर रहे हैं उसका त्याग करें, जो सामाजिक परिवेश है अपने गांव में वापस लौटे, वो अपने घर और अपने परिवार के पास वापस आए, और सरकार की तरफ से जो भी आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत लाभ देने की योजना है उसका भरपूर लाभ उठाएं और एक सभ्य और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
0: जी सर, ऐसे परिवार वाले और विशेष तौर से जो अभिभावक हैं जिनके बेटे बेटी मुख्य धारा से भटक जा रहे हैं और जंगलों में जाकर कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे कि उन बेटे या बेटियों में ये भटकाव ना आए?
2: जो अभी तक हम लोग को देखने को मिला है कि नए लोगों का भटकाव बहुत कम है, जो लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर है उनका भटकाव बहुत ही कम है। तो वैसे अभिभावकों को तो मेरी तरफ से यही संदेश होगा कि आप पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलेगा, जो सरकारी संस्थाएं उस क्षेत्र में काम कर रही हैं उन पे भरोसा रखें। आपकी कोई भी अगर समस्या होती है तो संबंधित विकास पदाधिकारी से या संबंधित पुलिस पदाधिकारी को भी आप संपर्क कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इन क्षेत्रों में हम लोग जो अर्धसैनिक बल हम लोगों ने रखे हुए हैं जिनके कैंप्स हैं उनके कैंप्स में भी आप संपर्क कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और जो पुलिस एवं अन्य बल उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं वो अपनी स्तर से या अपने पदाधिकारियों के स्तर से ऐसी कोई भी अगर समस्या आती है तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं का निदान तुरंत से तुरंत किया जाए। तो वैसे सभी अभिभावकों से मेरा पुनः यही आग्रह होगा कि अपने

0: किस किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं?
1: झारखंड सरकार की ओर से जो आत्मसमर्पण नीति है ये बहुत ही आकर्षक बनाई गई है। इसमें न ही केवल आर्थिक लाभ बल्कि अन्य ढेर सारे जो जीवन के पहलुओं से रिलेटेड परेशानियां होती हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो भटककर नक्सलवाद के साथ चले गए हैं तो उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक जो मूल रूप से आर्थिक मदद दी जाती है एक वो कंपोनेंट रहता है इस आत्मसमर्पण नीति में। साथ ही उनके पुनर्वास के लिए जमीन या घर मुहैया कराई जाती है जिसमें मुख्य रूप से अगर वो किराए के घर पर रहना चाहें तो उसका किराया उपलब्ध कराया जाता है अथवा उनको जमीन उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी जो खर्च होता है उसका भी वहन सरकार करती है 18 साल की उम्र तक का। कौशल प्रशिक्षण के संबंध में भी अगर कोई उसमें अपनी रुचि रखता है तो कौशल संवर्धन के हिसाब से उनको जिस स्ट्रीम में उनकी रुचि है उसकी भी ट्रेनिंग उनको दिलाई जाती है ताकि मुख्य धारा में जुड़ने के बाद वो अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अलावा जीवन बीमा का लाभ भी उनको दिया जाता है। तो अगर आप गौर से इन सारे पहलुओं को देखें तो सरकार की जो योजना है जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें जो भी व्यक्ति वापस आ रहा है मुख्य धारा में जुड़ने उसकी जो जो भी समस्याएं हैं जिन चीजों से उसको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं उन सब का इसमें ध्यान रखा गया है और उनको एक वृहद आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
0: जो भाई बहन हमारे जंगलों में भटक रहे हैं देखा गया है सर कि जब पुलिस वहां जाती है तो भय के कारण वो इधर उधर भागने लगते हैं, इस बीच मुठभेड़ में उन्हें गोलियां भी लग जाती हैं, तो भयमुक्त होकर वो प्रशासन के सामने आए, आत्मसमर्पण करें और जिन नीतियों के बारे में आपने बताया कि ये योजनाएं तैयार की गई हैं इनका वो लाभ ले सकें और भयमुक्त होकर वो प्रशासन के सामने आ सके, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: इसके लिए एक बहुत ही सामान्य चीज है कि जब सरकार ने ऐसी नीति बनाई है तो हम खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। उनमें से जो भी हमारे भटके हुए भाई बहन वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, उनका हम लोग पूरी तरीके से उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से भय के माहौल में रहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वच्छंद रूप से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आपका मुख्य धारा में स्वागत है और आप थाने के स्तर से लेकर वरीय पदाधिकारियों तक जिसको भी चाहे उसको संपर्क कर अपने परिवार के माध्यम से या अपने किसी मित्र के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं और उसके बाद जो आपकी सहायता करने की जरूरत आएगी वो हम लोग सहायता करेंगे।
0: सर ये सारी बातें आपने बहुत ही अच्छे ढंग से काफी विस्तार से बताई और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो भाई बहन जिनमें मुख्य धारा से भटकाव आ चुका है और वो जंगलों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ऐसे लोग आपकी बातों को सुनकर प्रेरित जरूर होंगे। सर अंत में जो श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं मैं चाहूंगी कि आपके मार्फत उन तक ये संदेश पहुंचे कि अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा आज के दौर में हम दें ताकि वो गलत रास्ता इख्तियार ना कर पाए।
1: शिक्षा जो अभी उपलब्ध कराई जा रही है वो अपने आप में मुझे लगता है कि उसमें बस परिवार के स्तर पे अभिभावक के स्तर पे बस ये आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों पे थोड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया का समय है, जो अन्य माध्यम है सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तो इनके माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है और उसको हम लोग अपने ग्रुप्स में या अपने परिचित लोगों के बीच में उनका प्रसारण करते हैं, उनकी शेयरिंग करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसे कहीं ना कहीं निगरानी रखें। उसके अलावा जो एक नैतिक जिम्मेदारी है एक आम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, कम से कम उन जिम्मेदारियों को हम समझें, अपने आसपास अपने पड़ोस में सफाई रखें, वातावरण

0: स्वच्छ रखें और ना केवल अपने घर और अपने कमरे की सफाई करें बल्कि आसपास की जिम्मेदारी भी हम लोग लें। जो पर्यावरण के संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं, चाहे वो जल हो या अन्य भी संसाधन हो, तो अपने स्तर पे जो भी हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं वो स्टेप्स लें। अभी जैसे जल शक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें जल संचयन और उस पर हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं, तो अपने कम से कम पारिवारिक स्तर पे, समाज के स्तर पे जो छोटी छोटी चीजें हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं जिससे हम एक सकारात्मक बदलाव लेके आ सकते हैं समाज में, उन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक सोसाइटी के लेवल पे और एज अ देश हमारी छवि और भी सुधरेगी और एक सकारात्मक बदलाव पूरे समाज में आएगा।
1: जी बिल्कुल सर, काफी विस्तार से आपने मुख्य धारा से भटकाव ना आए और लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी मुख्य धारा से जुड़ कर रहे हैं, भाई बहन इनके लिए जो विस्तृत रूप में आपने सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: आज हमारी बातें हुई कैसे हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ कर रहे और अगर हम में भटकाव आ भी गया हो तो किस प्रकार निडर होकर हम फिर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट सकते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु बनाई गई योजनाओं का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, अब इस बातचीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम आओ साथ चलें अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति और संयोजन था प्रभु शरण का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

प्रादेशिक मुख्य समाचार सुन सकेंगे आप शाम 5 बजे। युववाणी इस कार्यक्रम का वक्त होगा 5:02 का। सुनिए श्रमिक लोग 5:30 से। एक बार पुनः सुनेंगे आप प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे।

कार्यक्रम खेती बारी का वक्त होगा 6:02 का। सुनिए हमारी दुनिया 6:30 से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:00। आदिवासी अखड़ा इस कार्यक्रम का वक्त होगा 7:15 का। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे उराव भाषा में।

प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनेंगे आप 7:45 से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8 बजे से। सुनिए रजनीगंधा, जानिए क्या है सुर्खियों में 8:30 से। समाचार संध्या सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से 8:45 से। News@9 9 बजे और उर्दू में समाचार 9:15 से हमारे दिल्ली केंद्र से। पब्लिक स्पीक आप सुन सकेंगे 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से। सुनहरी यादें, इस कार्यक्रम का वक्त होगा रात्रि 10 बजे का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सीमा तिवारी के साथ। News@9 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज के कलाकार होंगे पंडित सियाराम तिवारी।

सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। आज का दिन बेहद शुभ, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। शहर में कविताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की हमारी और आपकी मुलाकात विशेष है। कहीं आस्था के रंग हैं, कहीं अपनी भाषा की मिठास है, तो कहीं रिश्तों में सजे प्रेम प्रतीक्षा और समर्पण के भाव हैं। हमारी संस्कृति की खूबसूरती भी तो यही है। यह उत्सवों को केवल कैलेंडर की तारीखों में नहीं रखती, बल्कि उन्हें गीतों बोलियों परंपराओं और रिश्तों में जीती है। और जब किसी शुभ शुरुआत बात हो, मंगलकर्ता श्री गणेश का, कहते हैं गणपति वहां विराजते हैं जहां मन में श्रद्धा हो और जीवन में शुभ संकल्प। तो आज के इस संगीतमय यात्रा का श्री गणेश भी क्यों ना गणपति जय घोष के साथ किया जाए।

ईश्वर को हम मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन शायद भक्ति की सबसे सुंदर अवस्था वो है जब मन स्वयं मंदिर बन जाए। और हमारी हिंदी में कितनी सहजता से गहरा भाव कह दिया जाता है। ये तो हिंदी की खूबसूरती है, ये केवल संवाद की भाषा नहीं, मन के भावों की भाषा भी है। भक्ति का यही भाव अगले गीत में प्रेम और समर्पण का रूप ले लेता है। क्या खूबसूरत भाव है, मन है मंदिर, उसमें ईश्वर के साथ साथ वो अपने भी बसे हुए हैं जिनके लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं।

दोस्तों, शायद भारतीयों और यहाँ के गीतों की यही विशेषता है कि यहाँ प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, उसमें विश्वास है, शिकायत है, अधिकार है और समर्पण भी। और जब बात प्रेम और समर्पण की हो तो फिर है ना तीज का रंग, हाथों में मेहंदी, चूड़ियों की खनक, सजी हुई हथेलियाँ, लोकगीतों की धुन और अपने प्रेम की मंगल कामना। तीज केवल श्रृंगार का पर्व नहीं, बल्कि रिश्ते में बसे स्नेह, प्रतीक्षा और साथ का उत्सव भी है।

0: बिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

से हम मुझे मेरी डगर तक याद नहीं।

बताना, चित्रों के ये छोटे छोटे रंग ही तो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन प्रेम की यात्रा किसी को पसंद कर वह है जब मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं, और उसकी परेशानियां भी अपनी, और तीज के मूल में भी तो यही कामना है, साथ बना रहे, विश्वास बना रहे, और जीवन की राह चाहे जैसी हो, दो लोग एक दूसरे का हाथ

दोस्तों, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि ईश्वर से जुड़ना हो या इंसान से, रिश्तों की असली भाषा प्रेम ही है। शब्दों से रिश्ते बनते हैं, शब्दों से संसार। हिंदी दिल की बात कहे, सहज सरल साकार। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में आस्था बनी रहे, रिश्तों में मिठास और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे।

0: सांस सरगम अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज रहे हैं दोस्तों। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। डुमरी के विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बरवाड्डा थाना मामले में जयराम महतो सहित 4 लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उन पर थाना प्रभारी से कथित गाली गलौज, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप थे, जिसके बाद पुलिस एसोसिएशन ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। धनबाद पुलिस ने वासीपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हत्या और रंगदारी सहित दर्जन भर मामलों का आरोपी बंटी फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भागने की फिराक में था। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा

0: सफर की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राज्यभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अभिलाष साहू का निलंबन वापस ले लिया गया है। इसके बाद आज रांची में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की आज अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 जिलों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। लोहरदगा जिले में गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। बरवा टोली, पतरा टोली और गुदरी बाजार सहित विभिन्न चौक चौराहों पर आकर्षक पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार।

एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज के इस सांध्यकालीन सभा में। आज की सांध्यकालीन सभा को लेकर आप सभी श्रोता दोस्तों के साथ आपकी हम सफर हूं मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार यशुदास के स्वर में सजे चंद चुनिंदा नगमे। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी और संध्या 6:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी रांची, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 6:30 पर। संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर हम आपके साथ होंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:00। 8:45 पर प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं, हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाय भाषा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार यशुदास के स्वर से सजे चंचुनिंदा नगमे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म संपर्क से।

कृत्रिम ससुराल से ये गीत श्रोताओं आप सुन रहे थे गायक कलाकार यशोदास के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने और धुन भी रविंद्र जैन की ही थी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म नैया से।

0: तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार यशुदास के स्वरबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा फिल्म साजन बिना सुहागन से। आवाज़ गायक कलाकार यशुदास की, बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन है उषा खन्ना की।

सावन को आने दो सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत इस फिल्म से। आवाज़ का एक कलाकार यशोदास की, बोल लिखे हैं पी पंकज ने और इस गीत को धुन से सजाया है राजकमल ने।

श्रोताओं, फिल्म साजन को सावन को आने दो के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में श्रोताओं, हमने आपको सुनवाए गायक कलाकार यशुदास के स्वर से सजे चंद चुनिंदा नगमे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज की खेती गृहस्थी में हम चर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेंगे बेमौसमी सब्जियों की खेती से लाभ, मनोरंजन करेंगे उड़िया लोकगीत से, और भेंट वार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेंगे केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में, जिसमें प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक सुनीता सोय, यशवंत केसरी, पुष्पा मुर्मू और महावीर कक्षप। और पुनः हम अंत में मनोरंजन करेंगे नागपुरी लोकगीत से। श्रोताओं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की आवश्यकता क्यों है? बेमौसमी सब्जियों की खेती से किसान सामान्य सीजन के मुकाबले कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जब बाजार में किसी सब्जी की सप्लाई कम होती है, उस समय उसे उगाकर बेचने से बेहतरीन दाम मिलते हैं। श्रोताओं, बेमौसमी सब्जियों की खेती से होने वाले लाभों को हम इस रूप में देख सकते हैं। उस समय अधिक बाजार मूल्य रहती है। सीजन न होने के कारण बाजार में इन सब्जियों की मांग बहुत अधिक और आपूर्ति कम होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है और हमें अधिक मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, जिस प्रकार मौसमी सब्जियां एक साथ आती है, कीमतें गिर जाती है, परंतु उस समय बेमौसमी सब्जियों में प्रतिस्पर्धा कम होती है। आम सीजन में हर किसान एक ही प्रकार की फसलों को उगाता है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा रहती है, और इस बेमौसमी सब्जियों की खेती हम कम जमीन पर भी कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान अपने कम जमीन का उपयोग करके भी इस तकनीकी से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, रोजगार के अवसर इसमें अधिक रहते हैं। श्रोताओं, यदि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती की तकनीकों के बारे में हम जानें कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं, तो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में, जहां इसका उपयोग तापमान और नमी को नियंत्रित किया जाता है, इसमें हम ठंड के मौसम में गर्मी की सब्जियां जैसे खीरा, शिमला मिर्च हम उगा सकते हैं। मल्चिंग विधि से जमीन को प्लास्टिक सीड से ढका जाता है, परिणाम स्वरूप नमी को बचाया जा सकता है, खरपतवार को रोका जा सकता है और जड़ों को गर्म होने से बचाया जा सकते हैं। और प्लास्टिक टनल, पौधों के ऊपर छोटी प्लास्टिक टनल हम बना सकते हैं, सर्दियों में कोहरे और पाले से हम उन्हें बचा सकते हैं। श्रोताओं, हम यदि देखें कि सर्दी में गर्मियों की खेती यानी गर्मी की जो सब्जी निकलती, जैसे टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, लौकी, तोराई, इनको पॉली हाउस और टनल तकनीकी से हम उगा सकते हैं। गर्मियों में ठंड में मिलने वाली सब्जियों की हम खेती कर सकते हैं, जैसे धनिया है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली है, इन्हें हम शेडनेट पॉली हाउस पर हम लगा सकते हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी
इस प्रकार की सुविधाएं ग्रीन हाउस हुआ, पॉली हाउस हुआ, इसकी सुविधा दे रही है, तो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद हम परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की आवश्यकता क्यों हुई और आज हमें इस योजना का लाभ क्यों लेना चाहिए। तो जानकारी दे रही हैं पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक सुनीता सोए और प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं यशवंत केसरी, पुष्मा मुर्मू, महावीर कक्षप और उसका संचालन रहे मैं सुरेश चंद्र सोए। तो आइए हम इस परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में।
1: आधुनिकीकरण, मशीनीकरण एवं लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर सिमट, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जीवन यापन कठिन हो गया। बुढ़ापे में जीवन यापन करना और भी कठिन हो जाता है यदि बच्चे माँ बाप छोड़ देते हैं। बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति मजबूत तथा बुढ़ापे में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की है, जिसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं अटल पेंशन योजना है। आज आकाशवाणी चाईबासा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं अटल पेंशन योजना पर जानकारी देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से सुनीता सोए और प्रतिभागी के रूप में जितेंद्र केसरी, पुष्पा मुर्मू और महावीर अच्छा पहुंचे हुए। आप सबों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सुनीता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता क्यों हो गई?
2: सबसे पहले तो आप सबको जोहार। मैं सुनीता सोए, पंजाब नेशनल बैंक में ये 2015 में ये दो योजनाएं लागू की गई है। तो आज हम ये मुद्रा योजना और अटल पेंशन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग की उन्नति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुद्रा योजना को शुरू किया ताकि देश की आम आदमी, गरीब और जरूरतमंद आदमी को उद्योग शुरू करने में या अपने जो वर्तमान उद्योग है उनको और ज्यादा शक्तिशाली और विस्तार करने में मदद मिल सके। जी, योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री योजना से देश का जो युवा वर्ग है उसको देश मिलेगा, तो वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगा, तो वो विदेश जाने के बजाय देश में ही काम करके देश के विकास में हाथ बढ़ाएगा। तो इसीलिए ये योजना जो है अगर लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये ज्यादा से लोग शामिल होंगे, ज्यादा आर्थिक सक्षम होंगे तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ेगी तो जाहिर है सरकार को टैक्स के रूप में इनकम भी ज्यादा होगी, तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो आप लोग को
3: मुद्रा योजना में कोई गारंटर की जरूरत पड़ता है क्या?
2: नहीं, मुद्रा योजना में सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि उनको है ना, अगर लोन लेना हो तो एक गारंटर की जरूरत पड़ती है ना। तो इस ये मुद्रा लोन में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें इस लोन में कोई गारंटर की जरूरत नहीं है।
3: प्रश्न उठ रही है दीदी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं?
2: अच्छा, मुद्रा योजना के लिए सबसे पहले तो ये एक भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। तो सबसे यही चीज है कि ये भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से लोन लेना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के लिए आप या तो आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप उत्पादन के संबंध में कुछ कर रहे हो या फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हो या फिर आप सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र में करना चाह रहे हो, तो तीन तरह के लोग ये होते हैं। तो उस विषय में उनको जानकारी होना चाहिए जिस चीज में के लिए वो लोन लेना चाह रहे हैं। तो बस यही है कि आप जिस चीज के लिए लेना चाह रहे हैं।
3: जानकारी लेना चाहते हैं कि मुद्रा लोन योजना में कितने तक लोन दे सकते हैं।
2: अच्छा, ये सरकार ने जो लोन जो है ये ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख तक ले सकते हैं, लेकिन ये आपके मतलब आपका प्रोजेक्ट जो आप तैयार करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो ये उन्होंने 3 तरह का लोन है इसमें मुद्रा योजना में, वो आपके कैटेगरी वाइज है कि उसको एक शिशु लोन बोला जाता है। शिशु लोन के अंतर्गत आप जो है इसमें 50,000 तक का लोन सरकार आपको देगी। दूसरा जो है किशोर योजना है, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन सहायता दी जाती है। और तीसरा जो है आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, है ना। अच्छा, ये 3 तरह का लोन है।
3: जैसे कि उसका ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है?
2: ये ब्याज जो है सामान्यतः जो है ये 12% पर एनम के करीब लगता है।
1: बैंक में जो जाते हैं जैसे ये मुद्रा योजना का हम लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कागजात का जरूरत पड़ता है?
2: अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप जाओगे तो सबसे पहले तो ये सबके रहता है कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है ना, तो ये मतलब ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो आप तैयारी करके रहोगे तो हो सकता है आपको जल्दी मिलेगा। तो आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है आपको कोई भी लोन के लिए। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये रहता है एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। उसके बाद आपको एक रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, इसमें आप बिजली का बिल लास्ट मंथ का, फोन का बिल भी चल जाता है, आधार कार्ड है, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर जो अगर आता है वो आइडेंटिटी प्रूफ में वो भी चल जाता है। उसके बाद एक तीसरा और एक चाहिए होता है कास्ट प्रूफ। आप जनरल कैटेगरी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी या माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपका ये तीसरा में ये आपका ये आता है आपका कास्ट प्रूफ। उसके बाद चौथा जो आपका आता है प्रूफ ऑफ बिजनेस, है ना। तो आवेदक जो है वो किस चीज़ के लिए लोन चाह रहे हैं, ऐसे कागजात जो आवेदक के उद्योग पर मालिकाना हक साबित करते हो, उद्योग की जगह का लाइट बिल, उद्योग का लाइसेंस वगैरह, तो मतलब जिस उद्योग के लिए हो सकता है आप नया उद्योग बनाना चाहते हो या फिर आप कोई उद्योग चला रहे हो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो आप किस तरह का उद्योग चला रहे हो उस पर आपका हक है कि नहीं, ये आपको चाहिए। मतलब ये आपका ये कि आप किस पर्पज से लेना चाहते हो, ये होता है। उसके बाद चाहिए होता है आपको बैंक के आपका जो खाता है उसका स्टेटमेंट, करीब करीब 6 महीने का लास्ट आपका जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 6 महीने का ब्यौरा चाहिए होता है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ इनकम, ये अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए होगा उसके लिए ये चाहता है आखिरी 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो रहता है, ये मतलब ज़्यादा अमाउंट के लिए, ये आपका शिशु लोन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपका किशोर और तरुण में ये आपकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, आप जिस लोन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, आप वो उसको आप दे देते हैं। ये करीब करीब इतना ही चाहिए होता है। उसके बाद आपको अगर उससे ज़्यादा लोन चाहिए 10 लाख आसपास का, तो उसके लिए और ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये मुख्यतः इतना ही जरूरत पड़ता है।
4: अच्छा,
1: जी इसमें खाता खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा
2: आपको? मुद्रा लोन के लिए आप तो ये मत ये हुआ कि आप ये सारे पेपर आपने तैयार कर लिए अभी जो मैंने बताया इनको, कि ये जो कागजात आपके पास हो गया, तो उसके बाद आप खाता अगर खोलना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने पास के बैंक में जा करके उनसे, है ना, मुद्रा लोन के बारे में पता करिए कि वो बैंक जुड़ा हुआ है कि नहीं, वहाँ से वहाँ के कोई लोन डिपार्टमेंट होता है वहाँ के अधिकारी से एक अपॉइंटमेंट ले करके उनसे, तब अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए। उसके बाद वो आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह है तो दिखा दीजिए उनको। उसके बाद बैंक के जो अधिकारी अगर आपके डॉक्यूमेंट से संतुष्ट होते हैं तो फिर आपको बुलवाया जाएगा तब वो पेपर वगैरह करने के लिए। तो उसके बाद प्रोसीजर होता है आपका, पहले तो यही आप लेके जाएंगे, उसके बाद हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे, अगर उससे संतुष्ट होते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो लोन डॉक्यूमेंट में कुछ पेपर वगैरह हैं उन पर साइन करवाया जाता है, उसके बाद आपका प्रोसीजर आगे चलता है।
4: हाँ जी, लोन की राशि किस प्रकार प्राप्त होती है?
2: अच्छा, जब का आपका अगर ये लोन का खाता खुल जाता है, जैसा ये मतलब जब भी है जैसा बचत खाता होता है बैंक में खुलना होता है, वैसे ही लोन का भी एक खाता खुलता है। ये जैसा आपको पेपर वगैरह सबमिट कर दिया आपने, बैंक के लोग आपके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संतुष्ट हो गए, तो एक खाता आपका खोला जाता है। ये तो वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने का और किस टाइप का लोन है, तो उस हिसाब से आप शिशु लोन, तरुण लोन, किशोर लोन, उस हिसाब से आपके उस बताया जाता है कि आप कौन से लोन के लिए एलिजिबल है, तो उस हिसाब से ये एक खाता खुलता है। तो खाता खोलने के बाद क्या होता है कि वो आपको डिसबर्समेंट अमाउंट मिलता है, तो बैंक आपको एक डिसबर्समेंट अमाउंट का चेक दे देती है जो आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। वहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार उसको खर्च कर सकते हैं, या फिर आपको एक रुपीज कार्ड भी मिलता है मुद्रा लोन के लिए, उससे भी आप अपने खाता से पैसे निकाल सकते हैं, तो वो आपका खाते में जमा हो जाता है।
4: दूसरा क्वेश्चन है, लोन खाते के लिए बैंक में बचत खाते की जरूरत है या नहीं?
2: नहीं, बचत खाता तो सबसे पहले जरूरत है, पर बचत खाता आपको खोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपका लोन का जो अमाउंट है बचत खाते पे ही होता है। उसके बाद आपको लोन बाद जब आप उसको रिपे वगैरह करेंगे, आप उसका जब पीरियड खत्म होता है आपको चुकाना होता है, तो बैंक खाता बचत खाता तो जरूरी है। बचत खाता आपको सबसे पहले तो बचत खाता खोलना है, उसके बाद आपको लोन का खाता खुले
1: जी। जैसे कि कोई कंप्यूटर दुकान खोलना चाह रहा है, हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: अच्छा, हाँ, कंप्यूटर दुकान खोलना चाह रहा है तो आप वही पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर में के संबंध में आपको नॉलेज है कि नहीं, आप उसके आप अपना एक देंगे सर्टिफिकेट देंगे कि आपको इस विषय में जानकारी है, ऐसे तो है ना। कंप्यूटर का दुकान के लिए भी आपको मिलता है, आप उसमें आप प्रोजेक्ट देंगे कि आप कितने तक का उसमें खर्च करना चाहते हैं, क्या क्या खर्च है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सारे रहते हैं, आप कहाँ से आप क्या लेंगे, किस टाइप का आप व्यय करेंगे, कहाँ कैसा होगा, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे तो आपको जितना आवश्यकता है उस हिसाब से आपको 50,000 या फिर जितना भी अमाउंट है, मतलब 50,000 है तो शिशु लोन, किशोर लोन, ऐसे आपको बैंक उसको आपको लोन अमाउंट सैंक्शन करता है।
3: अच्छा दीदी, जैसे कि समय पर अगर लोन को वापसी नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो स्थिति में क्या चक्रवृद्धि ब्याज चलता है या नहीं, क्या हो सकता है?
2: लोन में जो भी लोन होता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज ही चलता है, मतलब ऐसा है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट जो बोलते हैं वो पब्लिक के लिए वो नहीं होता है, आपको चक्रवर्ती ब्याज ही देना पड़ता है और आपको हर महीने वो चुकाना पड़ता है, ये बैंक आपको जिस जितना बोलती है वो आपको चुकाना पड़ता है, नहीं हुआ तो पेनल्टी का प्रावधान है।
4: मैंने सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मैं खुद का दुकान खोलना चाहती हूँ, मुझे क्या सहायता प्राप्त हो सकती है?
2: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुद्रा जो है ये महिला उद्यमियों के लिए एक महिला उद्यम निधि नाम से एक विशेष योजना संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की 3 श्रेणियां, इनमें शिशु, किशोर एवं तरुण के अंतर्गत सहायता प्राप्त की जाती है। तो आपकी कितना बड़ा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो शुरू में तो आप शिशु भी 50,000 तक का ले सकते हैं, उसके बाद मान लो आपकी बढ़ते जाती है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए एक अलग से उन्होंने विशेष योजना की है, तो आप ये जरूर ले सकती हैं। ये आपका 50,000 का ये बैंक में ही आपको फिर वो चार्ट बना रहता है, तो वो उस हिसाब से रहता है कि प्रीमियम वगैरह ये कितने दिनों बाद आप उसको पैसे रिपे करना है, आपको कितने दिन का मोरेटोरियम, मतलब बीच में आपको देते हैं कि आपको अपना जो भी बिजनेस हो या उद्योग है स्थापित करने का आपको थोड़े से उन्होंने वक्त देते हैं, उसके बाद प्रीमियम शुरू होता है कि हाँ उसके बाद आप इतना आपको रिपेमेंट करना है, वो आपका शुरू होता है, वो अमाउंट के ऊपर और कितने साल में पे करेंगे उसके ऊपर आपका ये निर्भर करता है। तो ये आप बैंक में जब खाता खुलता है तो वो आपका ये सारा वो कागजात जब भरते हैं तो वो आपको उस समय बता दिया जाता है कि आपको हर महीने कितने दिनों बाद कितने दिन के लिए इतने अमाउंट आपको चुकाने हैं ऐसे, तो ये आपको जब ये खाता खुलेगा उस समय बता दिया जाएगा।
1: मान लिया दीदी जैसे महीना, चार महीना, पाँच, छह महीना के बाद कुछ हो जाता है, नहीं दे पाए, उसके बाद क्या होगा?
2: नहीं नहीं, योजना तो ये लोन तो आपको पूरा ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बीच में कुछ आपने एक दो आप किस्त चुक गई है तो पेनल्टी के साथ में आपको वो किस्त तो चुकाना ही पड़ेगी। एक साथ नहीं है ये, आपको हो सकता है एक साथ दो महीने का या तीन महीने का, वो रेगुलर तो आपको चुकाना ही पड़ता है ऐसे।
1: मान लिया दो महीने जमा किए, हाँ, फिर जो हम बीमार हो गए, हाँ, या तो बाहर चले गए, उस स्थिति में फिर क्या करना होगा?
2: नहीं, ये उस स्थिति में भी आपको आने के बाद, जैसा आपने एक महीने का छूट गया तो अगले बार आप दो महीने का एक साथ जमा कर देंगे, या फिर आप है ना कि जितना भी प्रीम आपको इंस्टॉलमेंट जो आपको तय किया हुआ है तो एक साथ या फिर है ना थोड़ा थोड़ा करके उतना आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है पेनल्टी लगता है, मतलब पेनल इंटरेस्ट अलग से लगते जाता है ना, अलग से लगता है। तो आजकल बैंक में कंप्यूटराइज हो गया है तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि पेनल इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो आपको कितना अमाउंट जमा करना है, वो तुरंत तुरंत कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा। आप जाके उनसे पूछेंगे कि हम एक किस्त नहीं जमा कर पाए, कितना बचा है, तो आप वो आपको बता देंगे कि आपको अलग अलग से कि और कितना पैसा जमा करना है।
3: कल तुम्हारे में बहुत कुछ जानकारी दी दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी ले रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में। इस जानकारी के बाद आइए हम सुनते हैं ये संदेश।
5: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
0: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र को विदा दीजिए। जोहार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पल में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का, तो आइए समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। RBI ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक के लिए नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके तहत संदिग्ध लेन देन होने पर बैंक पूरे खाते की बजाय केवल विवादित राशि पर ही अस्थायी रोक लगा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार यह नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। नए प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों को संदिग्ध लेन देन का औचित्य साबित करने के लिए 20 दिनों का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान यात्रा चलाएगी। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन सेवा के 25 सफल वर्ष पूरे किए हैं। राज्य में SIR के तहत दावा आपत्ति और नए मतदाता पंजीकरण के लिए कल आखिरी दिन है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से 4,70,542 आवेदन मिले हैं। वहीं सुधार के लिए फॉर्म 8 के जरिए 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन के नए नियमों के तहत पूजा पंडालों का निर्माण बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर से सुरक्षित दूरी पर करना होगा। प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। और हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची में एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि और नामकुम स्थित संस्थान के पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. अंजेश कुमार ने विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता दायरा बढ़ता प्रभाव विषय पर अपना व्याख्यान दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: 21 June.
1: Sige, during buwa, yung tinatay ka na do, nando during sa ilo kage, homo bugin tayo ka man do chili kate. Ila daraking tinaling marbi mila hembrom taking.
0: Uri ulang re, abu disyum nate, ita disyum kureyo. Asyo pura karikram ko hubatan. Nen antarashtriya yog dibas do China mente manating otana nen re a jagar do, mai taking jagaratan aking aparichay do, aking tagaking kaj. Johar mai.
2: Johar.
0: Endo, abunan tum do China?
2: Aling eno tum do Rasmi Singh kutana.
0: Acha. Enen barsing China aku ben pad tena cibun padau tena jadi cili ke.
2: Na barsing do aling beard course ling beard tena.
0: Acha. Endo cai besar aga?
2: Iya cai besar aga mahila college re.
0: Acha. Aben huringe tege aben cai besar aga mana abena cah tupai kuriyo cili ke enen taik na ben.
2: Huringe te cai besar aga ling taik na.
0: Ondo yogri adu silkete ben rasena
2: aling huding re anya aji te ko raci re ko taikena
0: acha
2: ende ko idilidine raci enta re any holy cross school re 4 class jongen padha kena enta re yoga ente karate hoba taikena 3 class ete ko eto ko taikena any sisu class ete ni padha kena enta re
0: acha
2: 3 class ete ko taikena re do karate ondo yoga ate any yoga kade rasanya
0: acha
2: enta ate ge anya rasa do enta ate ge huju ene enta chana 5 class ate chai basa ling betayana chai basa re do nenta to kaku eto ko tai kina janta re enta ate anya yoga do bage yana acha enta anya rasa do tai kina
0: acha yoga to ar paj ke nan eto na mente ada
2: iya eto na mente ada rasa tai kina mendo okon ta ko eto ko chai basa re ena kanya dan taikin
0: o endo chenam do en beach re chilkem bagel taikin na te fir chenam ondo ama guru ko chi kon ta ko eto na kom chirga kila te unkulu re kida
2: e nen ta do ling padav kene te JBR school re ling padav kena 5 class se te 7 jom 8 class se te scout school re ling padav kena
0: acha
2: scout school re 9 class ling jab ling beta ena en re mendo mistakes hujulena एन मिस्टेस आनो तुम दो स्निग्धा प्रसाद तना
0: अच्छा
2: आकिन बार्सिंग लगे किन हो जोलना योगा ऐतो लगे
0: अच्छा
2: एन दो एन रे योगा कोलिंग ऐतो बाके ना अंडो किन से नो ऐना अंडो अन्य रांसा दो अंडो पूरे ना दो रांसा यंचि नेंता में नेंता चाय बासर रे योग ऐतो कुआ ना दो अन योगा ओकुन तारे को तो कुआ में ते नाम लगे डेन कुरुमुटे ने मैट्रिक ते ऐते तो ओंडो बागे या ना अन्य
0: योगा
2: एन चना ना अन पढ़ाव पढ़ाव ते स्नातक पांच बेटा के दा
0: अच्छा
2: स्नातक पांच बेटा के दो बीए पार्ट टू रंग ताई की ना हो ओनर्स एंड ओनर्स के ना
0: अच्छा
2: मुसिंग दिन पेपर रंग नेलता ना दीपक पासवान अंतरराष्ट्रीय योगा में आठवां स्थान आगुए कड़े एन दो एन अन पढ़ाव कड़ा एन तो चेनो जरूर तो रंग ओला का ना ओकों ता आरे होबा वा ऐतो को आको एन तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रे को ऐतो को ताई किना एन ओला कं ताई किना एन ते अन ना आ जुलुंग रंग ट्यूशन तं ताई किना जुलुंगे ते ना दो ट्यूशन चुट्टी एन एन ता ऐतन चेनो एन रेड क्रॉस सोसाइटी नाम लगे मधु बाजार रे ताई किना रेड क्रॉस सोसाइटी चेनो एन अन सीधे कांग ने लट्टाई किना एंते चना भी नाम के डा नाम ते नाम के दन एंत चना एंत आरे सुमित विश्वकर्मा नो तुम मास्टर टाइप के ना आया आ योगा पार्टी लग दो का आया आ व्यक्तिगत पार्टी ते आया पार्टी को पार्टी तन टाइप के ना एंत दलिंग जगार की है एंते रोईबर हो जो में ऐतन लग दे में तन्य एंत रोईबर लिंग ऐतो के डा एंत आते अलिंग योगा रिया शुरुआत हो गया
0: ya mana mido jana itu lagi tu mido master do dorkar gaya, namun te mido na guru bernamki redo do rasa do pura ena.
2: Iya pura ena, ondo na aling enta arere joena kaite, yoga joena kaite, na esu ling hasu tay kina ena mente yoga do ling rasa cuci yoga do ling yoga redo hasu kodo ling bugino ah.
0: Acha main ena jo yoga kina te, na mana redo इनका अपे योगा तो निमित्त लेल पर दो ती को कटा को पे पेड़ बाय अमन लेका इन्द जंगो बनो अमन लेका इन्दो इन्द कुन्या कुन्या सबन पे पेंटर भी हो रहना इन्दो निना को ᱡᱳᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱩᱨᱮ
2: ᱥᱤᱨᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱨᱟᱢᱨᱤ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱭᱳᱜᱟ ᱨᱮ
2: ᱱᱤᱭᱚᱢᱵᱚᱫ ᱛᱟᱨᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱭᱳᱜᱟ ᱨᱮ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱮᱱᱟ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱡᱩᱜ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱱᱟᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱚ ᱠᱟᱴᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱧᱟ ᱠᱚᱧᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱥ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱭᱳᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱭᱳᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮ
0: ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱮ
2: ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱭᱟᱰ ᱵᱟᱞᱟ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱟᱱᱩᱞᱚᱢ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱᱮ ᱮᱥᱩ ᱟᱸᱡᱟ ᱪᱤᱱᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
0: ᱵᱚᱜᱤᱱᱟ
2: ᱵᱚᱜᱤᱱ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱥᱩ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱯᱟᱪᱟᱣᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱟᱱ ᱟᱹᱥᱩ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱮᱭᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟᱱ

0: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एना बोया एन चन्ना योग दिवस रे सबिन को एते मूर्तिया अमंतरतना ओं संग गच्छद्वम संग वधद्वम संवो मनासी जानताम लोका भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते।
1: अच्छा
0: नैन मंत्र
1: नैन मंत्र में योगा को शुरू आया थे। अच्छा नैन योगा दो ना अमनर दो सुमंग हुडिंग हुडिंग कोई उनको कुहान को गे योगा या ती सबन उमर रन हो कुन्ने कोई योगा दे ये
0: सबन उमर रन हो को योगा दे ये सबन उमर रन हो को लगे तंगन तंगन बाये के ने नना तो आठ प्रकार या योगा था ना।
1: अच्छा
0: आठ प्रकार इन मैंने तो आठ अंग।
1: अच्छा
0: आठ अंग रे योगा था ना नन रे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि।
1: अच्छा
0: एना को मन एना मेंते नेना दो अष्टांग योग को मने।
1: अच्छा
0: अष्टांग योग नु तो मेंते उमिर ना कन।
1: अच्छा
0: एन रे अंगे हार्टिंग कने योग को हार्टी योग को
1: मने अलग अलग एन रे प्रकार में ना।
0: या एन रे हार्टिंग कने।
1: अच्छा अच्छा नेते सुपुर ना वो मने योगा तन रे ना अचिल के मने मोटा कट को मने दो ना इन दो को चिलकन चिलकन योग को ची योगा को योगा रे ना को कमो
0: मोटा कट को आज सबिन को इते सरल दो पश्चिम उतान तना पश्चिम उतान रे दो आको आको अबो ओ घुटने रे को सटाया।
1: अच्छा
0: एन रे आय लाय रे
1: दुबे कने ते ची
0: दुबे कने तर मैं ये दे ये तिंगो कने
1: तर ये उंगल कने ते। अच्छा
0: एन ते सुप्त वज्रासन मैंने वज्रासन दो मुकुई मुकुई बिंडु कने ते दो कम दुबे मुकुई लाटो में कहते हम दुबे।
1: अच्छा इकुम
0: इकुम कहते।
1: अच्छा
0: एन रे एन का दुबे कने ते हम गीती।
1: अच्छा दो या पाहरा
0: दो या पाहरा। अच्छा एन ना तो सुप्त वज्रासन को।
1: अच्छा
0: एन रे ओ चार्विको गटा।
1: अच्छा इना डेली भी इना योगा तो वाओ नेते ना आचिल के सुप्र हन को पढ़ाओ तन को मिना को पढ़ाओ को का सुकु को याद को का जो इनका ना जान योगम ना
0: ए पढ़ाओ को का सुकु को लगे दो मिना आको लगे दो साबिन को ते बाणियन प्राणायाम तना ब्राह्मरी प्राणायाम।
1: अच्छा
0: एन रे हन को काको पढ़ाओ मतलब ना उनुं के ना हन चिल के उनुं के ना ए टीवी को एनल केडा एन ते जान ना पढ़ाओ में बुमे तेर दो का पढ़ाओ सुकु पढ़ाओ आयरते पांच मिनट लेका ब्राह्मरी प्राणायाम।
1: अच्छा।
0: प्राणायाम इच्छी एन प्राणायाम ये कद आया मन शांत हो।
1: अच्छा
0: एन दो शांत मन ते पढ़ाओ दे
1: इन दो चिलके ब्राह्म ना बन कज कते हन का याद है ते पढ़ा तो पढ़ा सना और चिलके ने इन योग दो
0: ब्राह्मरी प्राणायाम तो नेल कता ना ब्राह्मरी प्राणायाम दुबे कने ते पद्मासन रे।
1: अच्छा
0: हतेली योग मुद्रा रिया स्थिति रे तैने
1: ती चितंती
0: या चितंती इन घुटना चितन रे एमा का अनेक योग मुद्रा रिया स्थिति रे तैने
1: मरंगंडा एंते चुंडुलती गंडा
0: या
1: इना किंग सपव कनाते न अपी गंडा दो सीधेते
0: सीधेते तैने।
1: अच्छा इना
0: एन एन का दुबे कनाते साइड भीतर तम एडी एंते चना
1: मुटे वाला
0: फोटो ऐते आवाज दम और ले आ
1: चाहे ना चिल्के मर रही है उल्का बन
0: नेलकन ध्वनि को और ले आ फोटो ऐते
1: ब्रह्मरी में नर दो ना सुसुरपंग को उरु को चिल्का को
0: सुरपंग को लेका साड़ी है
1: साड़ी
0: सुरपंग को लेका आंग्रे ध्वनि लेका साड़ी और डो सुरपंग को ध्वनि लेका बारियस आप ये लेकन ध्वनि को
1: सुरांसर काजी ची निमन बुगल का योगा रिया अबन अबन काजी किड़ा हो को जानकारी को नाम किड़ा अंडो योगा ये ते चिकन चिकन फायदा मिना ना को बन जगर किड़ा तो मैं अंडो मिशे मर अलिंग पे ते जोहार
0: जोहार।

0: ᱪᱤᱜᱮ ᱫᱩᱨᱮᱢ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱭᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱵᱟᱜᱩᱲᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱤᱱᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱠᱟᱥ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱯᱤᱱ ᱤᱨᱤᱞ ᱯᱤᱮ ᱵᱟᱨᱜᱩᱞ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱠᱩᱞ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱚᱞ ᱯᱚᱞᱚ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱮ ᱛᱩᱱᱰᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:31 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को आपके रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य ही आप व्यस्त भी होंगे। तो श्रोताओं, त्योहारों का सीजन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आज हम ये जानते हैं कि आज भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि है और आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी यानी आज का वही पावन दिन जब हमारे घर घर में श्री गणेश पधारते हैं। श्री गणेश सबके चहेते विघ्नहर्ता हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये पावन पर्व श्रोताओं आज पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों और बड़े बड़े बड़े पंडालों में बाप्पा की सुंदर मूर्तियां स्थापित करते हैं। अगले 10 दिनों तक पूरा माहौल मोदक की मिठास, धूप की खुशबू और आरती और भजनों की महक से सुगंधित हुआ रहता है। श्रोताओं कहते हैं कि जब बाप्पा आते हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाते हैं और जाते समय हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस बार खुशियों के साथ साथ हमें अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना है। त्योहारों और पूजा पाठ के बाद श्रोताओं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान को चढ़ाए गए फूलों और पुरानी मूर्तियों का हम क्या करें कि हमारी आस्था भी बनी रहे और हमारी प्रकृति भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी से जुड़ी हुई कुछ बात बताने जा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हमने आपको इस बात के बारे में बताने का निश्चय इसलिए किया श्रोताओं, क्योंकि आजकल ये हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा है कि जब कोई भी त्यौहार हो हमारे देश में तो बड़ों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी और जो हमारे युवा हैं वो भी हर तरह के आयोजन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ख़ासकर जब बात पंडालों की में पूजा की हो और घर में बड़े रूप से अगर आप पापा को बिठाते हैं तो घर के जो युवा होते हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और पूजा में अपना योगदान देते हैं। लेकिन पूजा के बाद हम एक गलती करते हैं, वो ये है कि पूजा के बाद जो बचे हुए फूल होते हैं और बप्पा की मूर्ति या बप्पा या फिर किसी भी देवता की मूर्ति, देवी या देवता की जो मूर्ति होती है उसे हम विसर्जित कर देते हैं हमारे घर के आसपास जो तालाब होते हैं या फिर नदियां होती हैं उसमें। लेकिन श्रोताओं, हम आपको बताएं कि ये हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी असुरक्षित है। तो हम ऐसा क्या करें कि पूजा तो हम करें ही खुशी खुशी के साथ, लेकिन पूजा के बाद पूजा की जो सामग्रियां होती है यानी कि फूल होते हैं, जो भी सजावट के सामान होते हैं, पूजा की जो सामग्रियां बच जाती हैं और ख़ास करके जो भगवान की मूर्ति होती है उनका हम क्या करें, ये भी आपके मन में ज़रूर सवाल उठता है कि आखिर हम इसका करें तो क्या करें। तो श्रोताओं, हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सूखे हुए फूलों को गमलों की मिट्टी में मिला दें या फिर इसे आप सुखा लें अच्छी तरीके से। जो भी आप फूल सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर पूजा में इस्तेमाल करते हैं उन फूलों को आप अच्छे से धूप में सुखा लें और आपको पाएंगे कि आपके पौधों के लिए बेहतरीन जैविक खाद आपके को तैयार मिलती है। और इसके अलावा अगर आप फूलों को अच्छी तरह से सुखा कर लेते हैं तो आप इससे नए पौधे भी उगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो काम आप कर सकते हैं इन फूल और पत्तियों से,
इको फ्रेंडली धूप और अगरबत्ती का निर्माण भी आप इससे कर सकते हैं। फूलों की पंखड़ियों को सुखा लें, अच्छी तरीके से उन्हें पीस कर इसमें थोड़ा सा कपूर, धूप और देसी घी मिला करके आप घर पर ही सुगंधित प्राकृतिक धूप बत्ती बना सकते हैं, जिसमें न तो किसी तरह की मिलावट होगी और आपके हाथ की बनी हुई ये अगरबत्ती अगर आप भगवान के सामने जलाते हैं तो भगवान तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। और इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं इन फूलों से, आप इन फूलों को अलग अलग रंग के हिसाब से और उनको सुखा लें, लाल पीले फूलों की सूखी पंखड़ियों को पीस कर होली के लिए आप प्राकृतिक गुलाल भी बना सकते हैं। इन्हें आप कांच के बर्तन में रख कर खुशबूदार पोटपोरी की तरह घर में भी सजा सकते हैं। इसके बाद ये तो हुई बात श्रोताओं की, ये जो फूल पत्तियाँ हैं इनका आप क्या करें, लेकिन इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है मूर्ति, बापा की मूर्ति या फिर जिस भी देवी देवता की आपने पूजा की हो उनकी मूर्ति का क्या करें। तो यदि मूर्ति मिट्टी की है तो उसे आप पानी से भरे एक साफ टब या गमले में घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं। वो ये पूरी तरह से मूर्ति के आकार पर निर्धारित होगा कि आप इस मूर्ति का कहाँ विसर्जन करेंगे, लेकिन अगर छोटी साइज की मूर्ति है तो आप इसे घर में ही पानी के टब में विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन में ये मूर्ति पूरी तरीके से गल जाएगी और फिर इस मिट्टी का उपयोग आप अपने गमलों में फिर से कर डाल करके नए पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। और अगर मिट्टी की मूर्ति आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप धातु या पत्थर की मूर्तियों को भी घर ला सकते हैं। इन्हें आपको हर साल विसर्जित नहीं करना पड़ेगा, आप इन्हें पानी में डुबाकर या फिर विसर्जित करके वापस से गंगा जल से धो करके अपने घर में रख सकते हैं और जब अगली साल फिर से पूजा का वक्त आए तो आप इन मूर्तियों का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नदी तालाबों का को सुरक्षित रखने में अहम भाग निभा सकते हैं। तो आप भी लगाइए बापा को मोदक का भोग, सजाइए अपने घर और पूरे दिल से कहिए गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इस चर्चा के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं बापा को समर्पित ये गीत।

0: तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिन पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है ना कि हम अगर अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं तो हम अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगते हैं, यानी कि हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों श्रोताओं? जब हम कहते हैं कि हिंदी हमारे जीवन के लिए अहम है तो इसका मतलब सिर्फ एक भाषा से नहीं होता। भाषा तो सिर्फ संवाद का एक जरिया होती है, लेकिन हिंदी हमारी संवेदना है। श्रोताओं, जरा गहराई से सोचिए, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है या फिर जब हम गुस्से में होते हैं या फिर हम दुखी होते हैं या फिर जब दिल से किसी के लिए कोई दुआ निकलती है या फिर जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपके मुंह से कौन सी भाषा निकलती है? क्या इंग्लिश आपके मुंह से निकलती है? नहीं ना, वो होती है हिंदी भाषा, जो अपने आप आपके मुंह से निकलती है। क्योंकि अंग्रेजी हमारे दिमाग की भाषा हो सकती है, पर जो दुनिया भर में व्यापार और नौकरी करने में हमारी मदद करती है, लेकिन हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो हमें अपनों से और अपनी मिट्टी से जोड़ती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब आज का युवा अंग्रेजी के बारे में सोचता है तो वो ग्लोबल बन जाता है, पर जब वो हिंदी से दूर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति और विरासत से कटने लगता है। हिंदी में हमारे कबीर के दोहे हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं और हमारे दादी नानी के किस्से भी हैं। ये भाषा हमें सिखाती है कि अपनों का आदर हमें कैसे करना है, क्योंकि इसमें आप, तुम और तू का वो बारीक सा फर्क है जो दुनिया की बहुत कम भाषाओं में देखने को मिलता है। क्योंकि अंग्रेजी में तो आपके चाचा भी अंकल हैं, आपके मामा भी अंकल हैं, आपके फूफा भी अंकल हैं, तो आपके मौसा भी अंकल हैं। तो ये जो रिश्तों का फ़र्क है ना, वो भी हमें हिंदी भाषा ही सिखाती है। और इसलिए अंग्रेजी को अपने पंख बनाइए, लेकिन दुनिया में ऊँची उड़ान भरने के लिए आप हिंदी को अपनी जड़ बनाइए, ताकि कितनी भी तेज हवा चले आप अपनी जमीन से जुड़े रहें। क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो हर मौसम में लहलहाता रहता है। श्रोताओं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हिंदी पर हमने आपके साथ इतनी सारी बात क्यों की। तो श्रोताओं, हम आपको बताएं कि आज हिंदी दिवस है और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम जो हिंदी से कटते जा रहे हैं उस कटाव से हम बचें, हिंदी की ओर हम अग्रसित हों और साथ ही अग्रसर करें हमारे बच्चों को हिंदी की ओर और हम उन्हें बताएं हिंदी की महत्वता को, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं उसमें भी हिंदी में फॉर्म भरे जाते हैं, हिंदी में ही काम किया जाता है और हिंदी में ही बात भी की जाती है। तो आइए सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं श्रोताओं, बल्कि हर दिन हम अपनी भाषा पर गर्व कहें करें और कहें हिंदी हमारी शान है, भारत की जान है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ अभी हम आपका मनोरंजन कर रहे थे। इसके बाद आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश। अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। इन संदेश के साथ ही श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम युवाणी से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
5: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
4: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
6: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
7: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
10: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
9: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
10: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे रे, अरे कहाँ चल दिए
9: एनएसबी कराने?
10: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी की रोज
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, वर्ष 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए वोटर पंजीकरण का कल आखिरी दिन। अब तक 7,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त। राज्य भर में गणेश चतुर्थी की धूम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी एक महीने का सेवा संकल्प अभियान। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सभी जिलों और बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 14 सेवा कार्यक्रम। और हिंदी दिवस पर राज्यभर में कई समारोह आयोजित। सुशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए सरल हिंदी अपनाने पर दिया गया जोर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा और एनडीए समर्थित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की बात कही। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि तीन तलाक की समाप्ति के बाद अब इन राज्यों में यूसीसी भी समय सीमा से पहले प्रभावी कर दी जाएगी।
12: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है, और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
11: खान एवं खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2026 के लागू होने पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए निंदा की और कहा कि इस कानून से राज्य को दोहरी क्षति हुई है, जिससे केंद्र पर 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला रॉयल्टी दावा समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
13: विधानसभा में जो भी विषय उठाए जाएंगे वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये विशेष अधिकार। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि जितने भी विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो विधानसभा के अंदर के अतिरिक्त विधानसभा के बाहर भी जनहित की बातों को करते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो जनता से वोट लेकर के आते हैं और उनके साथ कुछ कमिटमेंट

0: सकता जो जेन्युइन डिमांड वह।
1: राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए मतदाता पंजीकरण के लिए कल आखिरी दिन है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से 4,70,542 आवेदन मिले हैं। वहीं सुधार के लिए फॉर्म 8 के जरिए 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पहुंचकर भगवान गणपति की पूजा अर्चना और आरती की। राज्यपाल ने भगवान गजानन से राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए सभी को बधाई दी।
0: पूरे प्रदेश और देश की मंगल कामना की बात करते हैं और भगवान को इसीलिए स्मरण करते हैं और किसी रूप में भी करें। यहाँ के बाद महाराज से देश के अधिकार है, इसका एक लंबे तरीके से पूजन होता है, तो मेरी आपके माध्यम से सभी जुड़े हुए साथियों को शुभकामनाएं।
1: इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पावन अवसर पर समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की स्तुति करते हुए मुख्यमंत्री ने विघ्नहर्ता से प्रार्थना की कि वे समाज में प्रेम शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखें और सभी के जीवन से बाधाओं को दूर करें। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत पूजा पंडालों का निर्माण बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर्स से सुरक्षित दूरी पर करना होगा। प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सुरक्षा के लिए पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान यात्रा चलाएगी। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनसेवा के 25 सफल वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन सेवा का उनका 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। ये 7 तारीख को पूरा हुआ, 7 अक्टूबर, तो इसलिए पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरा एक महीना सेवा संकल्प अभियान यात्रा।
1: डुमरी के विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बरवाड़ा थाना मामले में जयराम महतो सहित 4 लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उन पर थाना प्रभारी से कथित गाली गलौज, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप थे, जिसके बाद पुलिस एसोसिएशन ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड की कोडाकेल पंचायत में आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला परिषद सदस्य दयामणि मुंडू और स्थानीय मुखियाओं ने ग्रामीणों को बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का महत्व समझाया। वक्ताओं ने फास्ट फूड से बचने और स्वच्छता अपनाने की अपील की। धनबाद पुलिस ने वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हत्या और रंगदारी सहित दर्जन भर मामलों का आरोपी बंटी फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भागने की फिराक में था। धनबाद लाए जाने के बाद पुलिस ने उसका परेड भी कराया।
3: बंटी खान गिरफ्तार हुआ है, अभी डिटेल्ड पूछताछ चल रही है बैंकमोर थाना में, बहुत सारे राज इसने उगला है। अभी पुलिस इसको ले जाके कुछ ऐसा जगह बताया है जहां कुछ संदिग्ध सामान छुपे होने की भी सूचना है, और उसके बाद जो जो चीज ये बताया है उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आज इसको जेल भेजा जाएगा और फिर हम लोग रिमांड पर ले जाकर फिर विस्तृत पूछताछ करेंगे।
1: राज्य में हिंदी दिवस के अवसर पर कई राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है और यह देश की एकता और अखंडता की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में कार्मिक विभाग के समारोह में सचिव प्रवीण टोप्पो ने सुशासन के लिए सरकारी कार्यों में सरल हिंदी अपनाने पर जोर दिया, जबकि आकाशवाणी रांची की कार्यशाला में डॉ. अंजेश कुमार ने हिंदी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया। और अब मौसम। राज्य में 18 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1 जून से अब तक 870 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 5% कम है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, वर्ष 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति और नए वोटर पंजीकरण का कल आखिरी दिन। अब तक 7,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त। राज्य भर में गणेश चतुर्थी की धूम। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी

0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी एक महीने का सेवा संकल्प अभियान। बाबूलाल मरांडी ने कहा सभी जिलों और बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 14 सेवा कार्यक्रम। और हिंदी दिवस पर राज्यभर में कई समारोह आयोजित, सुशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए सरल हिंदी अपनाने पर दिया गया जोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए।
3: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
4: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
3: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
4: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
3: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
4: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनवाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
4: जी हाँ, कानून भी यही कहता है, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
3: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
4: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
3: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
4: और लड़के की 21 वर्ष है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों में दावा एवं आपत्ति से संबंधित सुनाई प्रक्रिया जारी है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाएं। लोहरदगा जिला प्रशासन की विशेष पहल अकिल एड़पा बेहतर शिक्षा की ओर के तहत जिले के पदाधिकारियों को विद्यालयों की जिम्मेवारी दी गई है, जिसके तहत पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने आवंटित विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में पदाधिकारियों ने विद्यालयों में शैक्षणिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराई। यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। लोहरदगा जिला में बॉक्साइट डंपिंग यार्ड के मजदूरों के हक एवं अधिकार की मांगों को लेकर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उराव के द्वारा किया गया। इस मौके पर अनिल उराव ने कहा कि
2: आज यहां के स्थानीय मजदूर जो कि डंपिंग यार्ड में काम करते थे, उनकी संख्या लगभग हजारों है, वो यहां डंपिंग यार्ड के हटने से बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डंपिंग यार्ड नाम के लिए हटा, एक्चुअल में जो है रोपवे का डंपिंग यार्ड चालू है। तो आज मजदूरों का यही मांग है, हमारा जो है रोजगार छीन लिया गया है तो फिर ये रोपवे क्यों चला है? इस रोपवे को हम लोग बंद कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और एक दिवसीय आज रोपवे बंद रहेगा। साथ ही साथ आज मजदूरों का जो डिमांड है कि हमारा मजदूरी के साथ यहाँ स्थानीय लेवल पर जो है स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए।
1: झारखंड में नियुक्ति घोटाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोहरदगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि
3: लोहरदगा के बहुत अच्छे आदिवासी छात्र छात्रावास में मेरी बात होती है, बहुत बच्चे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं,
1: नेशनल यूथ फेस्टिवल के आयोजन को लेकर लोहरदगा में युवाओं को भी प्रेरित किया जा रहा है। युवा कार्य विभाग के अजय कुमार सैनी ने बताया कि यह आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में होगा और इसमें लोहरदगा जिला के युवा भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि
4: हमारे लोहरदगा के जो यूथ हैं उनके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं। अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल का 30वां संस्करण स्टार्ट हुआ है जो कि 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली 2027 में ऑर्गेनाइज होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लोहरदगा का यूथ है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 की जर्नी में हमारा साथ दे।
1: लोहरदगा जिला में गणेश पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में हर तरफ उत्साह एवं भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार चुहार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर करे बाप्पा आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और धन समृद्धि लेकर के आए और जाते जाते लेते जाए आपके दुखों को और आपकी तकलीफ़ों को। तो इस शुभकामनाओं के बाद श्रोताओं आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और देखते हैं आज किन किन श्रोताओं ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। तो कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश हमें मिली है पाकुड़ झारखंड से और हमें खत लिखा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु टासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। परमवीर हाउस आदर्श नगर बटेंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। बड़काकाना से अफजाल ताज, साहिल सुल्ताना और मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से और खत लिखने वाले श्रोता है बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती। बड़विल ओडिशा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कोरडा बहादुर जिला मानसौर के नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वीके डांगी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम उघड़िया से हमें खत लिखा है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा, अर्जुन बोद्रा और रवि बोद्रा ने। इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है हमें ग्राम उघड़िया बड़ा मांबो से। ग्राम दुरा बांदा भाटापाड़ा के प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मलोट कैंप पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेजने वाले श्रोता है विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म बलमा का ये गीत जिसे आवाजें दी हैं गायक कलाकार आशा भोसले और कुमार सानू ने। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है नदीम श्रवण की और इस गीत के लिए ही अपनी फरमाइश हमें भेजी है पीएमसीटी सद्भावना रेडियो श्रोता सिंह बनारस यूपी से और हमें खत लिखा है आजिन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित, हर्षित और पुलकित ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। बड़ी बाजार चायबासा के मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है टुंगरी चायबासा के पंडित आर के पाठक, अनिता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक, माहौलिया सोनवा के नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तन्नु, डिस्को महतो और भाई नंदो महतो ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। बड़ा बाम्बो जोरडीहा से इसी गीत को सुनना चाहा है मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो ने। बागपत यूपी से एहसान अली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंधराठाड़ी मधुबनी बिहार से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सोभिकांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एसके सज्जन।
गांव चांदपुर पोटका से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू और बसंत कुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला के सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद ने भी अपनी फरमाई समय फिल्म बलमा के इसी गीत के लिए भेजी। मुसाबनी से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णव राज। बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हम तक भेजी जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और सभी डागला परिवार के सभी लोगों ने। लालपुर मारो से अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए हमें भेजी कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव,

फिल्म बलमा के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है छत्रपति संभाजी नगर से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राजेश सापले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, बोरखेड़ा विप्रमाल जिला उज्जैन के विनोद मुणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक महक मुणत, चेतन नाहटा और परी मुणत की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कुचाई तोड़ंगदी दो से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मुकेश महतो, विजय महतो, दिलीप महतो, सूरजमणि महतो, सुमन महतो और रविंद्र महतो। इचलकरंजी महाराष्ट्र से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मेतांशु हजारे। ग्राम पोंडाकाटा से हमें खत लिखा है नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पातुर बांकीड़ा, डोली बांकीड़ा और रघुनाथ चरहट ने। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। आमला टोला चायबासा से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। बटिंडा रोड डबावली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने भी हमें खत लिखा है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमें कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश मिली है कुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया की। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म पत्थर के फूल से। और इसी गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से, अल्जियार अब्राहम, उज्जैन अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोसेफ रूफट, अविनाश क्षेत्रपात, सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरामन सेंडे और उनके साथी। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक की फरमाइश भी हमें फिल्म पत्थर के फूल के इस गीत के लिए मिली। चायबासा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सोनू शर्मा, ऋषिकेश और नंदू शर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक के सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं राधिका गजबीये, अनिष्का और तन्मय गजबीये। विलायगढ़ छत्तीसगढ़ के रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बेरड़ी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के प्रकाश बोर गांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोर गांवकर की फरमाइश भी हमें फिल्म पत्थर के फूल के इस गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आमखोंडरा रेंगाखार से राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म पत्थर के फूल से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म पत्थर के फूल के को आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था देव कोहली ने और धुन थी राम लक्ष्मण की। आइए आगे बढ़ते हुए लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है पटेल नगर मलोट पंजाब से। और हमें खत लिखा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से मिला है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखा है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि दीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु रीतिका, नीरज रिचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों ने। गांव हंडीरा से मानताराम सिंह गुंडिया ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता ने भी हमें खत के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र के नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम सोहम मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने। प्रयागराज के पीयूष प्रताप सिंह, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। गांव खैरों के गुरदूषण लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द ने अपनी फरमाइश हमें भेजी। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार उदित नारायण के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म डर से। इस गीत के बोल को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन है शिव हरि की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागड़ी। चितलवाड़ी अकोला के अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधिरा इंगले और समस्त इंगले परिवार ने भी अपनी फरमाइश हमें फिल्म डर के इस गीत के लिए भेजी। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से। और हमें खत लिखा है जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान ने। तुरीटोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने। लक्षनपुर से जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक और रामजीत साहू की फरमाइश हमें इसी गीत के लिए मिली। बापा कुटी रायगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान। भड़गांव बलौदा बाजार के रामदुलार साहू और नीलिमा साहू की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश हम तक भेजी भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रुजुबाई तड़वी, परू, मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारीकर ने। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र के अरशद तड़वी, आरिस अरसलान और यूनिस तड़वी ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखने वाले श्रोता है मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरविंदर हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता है शिवम, शिवाजी मुंडरे, सुरामणि मुंडरे, हेमांती मुंडरे, हीरामणि मुंडरे, डोबरो मुंडरे, साजन मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरे, सिद्धिबोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरी। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और मानस साहू और प्रतीक कुमार की फरमाइश भी हमें फिल्म डर के इसी गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार उदित नारायण के स्वर में फिल्म डर से।

0: फिल्म डर के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें मिला है सदर प्रखंड चाईबासा से, चाईबासा के बरकुंडिया से। और हमें खत लिखा है मीना बिडोली, सुंदरलाल बिडोली, गुलशन बिडोली, लाल मार्शल बिडोली, चांदमनी देवगम, सस्मिता बिड़वा, नील मार्शल बिडोली, तरल मार्शल बिडोली ने। और कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है बंसाई चाईबासा से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं परमेश्वर कुमार, देवंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत ने। टोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामोरिया ने भी अपनी फरमाइश हमें खत के माध्यम से भेजी। किशनगंज बिहार से ये खत लिखा है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु ने। गांव दलाई किला खरसावा के लक्ष्मण सोए, आयु सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत, जिसे अपनी धुन से सजाया है राजेश रोशन ने। और ये गीत निकला है समीर की लेखनी से। और इस गीत को आप सुनेंगे फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, पीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, विकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी। मझगांव के अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, बिरंची गोप और सबा अहमद ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजे। ग्राम जामठी वरुण अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकल कासलेकर, विमल विशाखा कासलेकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है जमशेदपुर स्टेशन रोड से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पू भाटिया और सोनू भाटिया। सिमधर पार्क विरमगाम गुजरात के अजीत प्रेमिला, भावेश सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जैमिन भावसार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बोर्ड सैरा नैला से हमें खत लिखने वाले श्रोता है प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। मेरी टोला चाईबासा के विशाल कच्छप और दुलारी बिरुली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली फाजिलका पंजाब से। और हमें खत लिखा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, अरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह भूक और खेड़ा परिवार के सभी लोगों ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है राजेश रोशन की।

श्रोताओं, फिल्म आप मुझे अच्छे लगने के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 8 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है हमारे सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर आप सभी श्रोता दोस्तों के साथ हाजिर हूँ मैं, संगीता। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत, मैंने प्यार किया से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है गायक कलाकार शारदा सिन्हा ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बिलासपुर देवरी खुर्द से संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास। महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडावा ग्राम लोहारी के राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे और गायत्री धनजे की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। खुर्दी रोड मानपुर से इसी गीत को सुनना चाहा विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है कुचाई बितरी गांव से और हमें खत लिखा है केपी सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए ने। ग्राम सूराबेड़ा के पासिंग सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखपति सरदार, रमेश अंशु और बिरू सरदार ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजे यादव और यादव परिवार के सभी लोग। नांगलोई दिल्ली के मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्डा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम अमलेश्वर से फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिन ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। मेन रोड सोनवा झारखंड के गुरुचरण नायक, अंसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुसी प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमित कुमार दामोदर। बड़सिंगी बुलडाणा के अमोल मानकर, सुभताय मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी हमें फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गीत के लिए मिली। सनेन क्लब मोहाली से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। गांव नवागांव मुढ़ई पार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के सोहन साहू, रुकमती श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सरिता गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती सैलेश वैशाली, सैलेश गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें मिली है। बदलापुर मुंबई से इसी गीत को सुनना चाहा सिद्धांत गवांडकर और प्रणिता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर ने। बड़ा बाम्बो गोपालपुर के संतोषी महतो और जय कुमार महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है बरेली कैंट रेलवे केविन के पास चनहटी बरेली से और हमें खत लिखा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। गांव केता सरायकिला से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित, अभिषेक, आशीष, सुमित, अनामिका, सुनीता, गीता, रीता, सुलेखा, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म मैंने प्यार किया से गायक कलाकार शारदा सिन्हा के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और ये खत हमें लिखा है वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्ला फ़कीर, डब्लूल्ला फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर, और बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी की फरमाइश भी हमें मिली है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से, और हमें खत लिखा है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद ने। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश समय भेजी आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। कोर्ट रोड बागपत से यूसुफ आजाद, वसीला साहिल आजाद और अंजुम नाज ने भी अपनी फरमाइश हम तक भेजी। ग्राम हथनंग तोड़ंग टोला महाली साई से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बिरबल महाली, सरस्वती महाली, फुलवंती फुलवनी महली, शकुंतला महली, सुमांती महली और यशोदा महली। न्यू कॉलोनी टोंगरी तसर फॉर्म रोड चायबासा के रश्मिता राउत, मधुष्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मछली गोदाम कैंदीमुड़ा रायगढ़ से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है, और हमें खत लिखा है पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह ने। रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ के रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी की फरमाइश भी हमें मिली है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जरूर वरुण महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। पुरानी भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, सहनबाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोग। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अपनी फरमाइश हम तक भेजी प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर ने। चायबासा से मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखा है यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना ने। अनारकली बाजार जगराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव की फरमाइश भी हमें फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत के लिए मिली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशब्द और राहुल। ग्राम बठेना पाटन से हमें कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश मिली है, और हमें खत लिखा है बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली और शिवम ने। चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा, सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है ग्राम हारूडी से, और हमें खत लिखा है तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो ने। कोचाई ग्राम इचाहातु के गुलाराम लुवादा, लुदरी सोमनाथ और पूर्णिमा लालमुनि बिंजना और लुवादा परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें मिली है। ग्राम लोसो दिकी से हमें खत लिखा है कोमल महतो, पेमी, गोविंद और जीतू साइमन ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सेक्टर 67 चंडीगढ़ मोहाली से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से सुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, और साहिल की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। टावर चौक गुमला से अपनी फरमाइश हमें भेजी SM जावेद, सगुप्ता अंजुम और चेनिस जौहरी ने। गांव चौहलता बागपत से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। मॉडल टाउन पानीपत से अपनी फरमाइश हमें भेजी संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आनिया, नेहा सागर गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इम्बू कुरैसी और सुधीर नूतन। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है जालौन उत्तर प्रदेश से, और हमें खत लिखा है सतेंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और साहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हमें खत लिखा रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। बड़ा निमड़ी चायबासा से मिला है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार। आमजोड़ा मालुका के शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म ऐतराज से ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं गायक कलाकार उदित नारायण और जयेश गांधी ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवा सेरे। मैं क्रेडिट श्रोता सिंह नावागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ के अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ के दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वानिया सिंगरौल ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म ऐतराज से गायक कलाकार उदित नारायण और जयेश गांधी के युगल स्वरों में। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म ऐतराज के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो के युगल स्वरों में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ा बाम्बो गांव सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी। ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, वसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आलिका डब्बावली से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडली बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। ग्राम फ्रांसी के राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी और प्रमोद कुमार डूडी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हाँसी शहर से

गीत को सुनना चाहा राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। लक्षनपुर से इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं रामजी साहू और जीवन लाल रजक। मोपका भाटापाड़ा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत हमें मिला है ग्राम बादुड़ी से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति कुदादा, विक्की कुदादा ने। और पुरानी टोली जसपुर नगर छत्तीसगढ़ के मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, पुष्पा, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है बलराम गेट कासगंज से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता है एम असलम सैफी, जुबेनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी और आवाद खां। छोटा निमड़ी चायबासा के बापू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमारी ने अपनी फरमाइश हमें फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के इस गीत के लिए ही भेजी। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है शास्त्री नगर बीड शहर के किशन सपकाल, आशा सपकाल, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परभणी से सी आर कुलकर्णी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो के युगल स्वरों में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे जरिए इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें खत अवश्य लिखें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा। चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। खत में आप अपने पसंद के गीत के साथ ही साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य ही हमें साफ सुंदर अक्षरों में लिख भेजें। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म कर्मा से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह की। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से सरफुरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव के वलीउल्ला अंसारी और आसमानाज अंसारी ने भी अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। चमन पार्क दिल्ली से इसी गीत को सुनना चाहा सोनम और आदिमा ने। और सारिमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हमेरा नाज, सुमेरा नाज, आबिया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैक और छीना सैक ने। कोकिलवाड़ा उड़ाई मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल सैक, नुजर जहां नाज की फरमाइश भी हमें मिली है। कांति निकेतन राजनगर से हमें खत लिखा है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता ने। भाटापाड़ा से अपनी फरमाइश हमें भेजी सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेंद्र लहरे ने। डबावली हरियाणा के जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। खरसभा पतिसाई से हमें खत लिखा सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गाँव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने। पीपरपाड़ा पालचुआ मुंगेरी से अपनी फरमाइश हमें भेजी उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर ने। आदर्श नगर मटरोड से हमें खत लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हमें भेजी दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू और ची डोंगरी पुपरिया से दुर्गाराम साहू की फरमाइश भी हमें मिली है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा, सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म कर्मा से। आनंद दीजिए आपकी पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म कर्मा के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में

अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने जा रहे हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमेरिकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सदस्यता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा

0: निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्ट्री योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और GSP जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
6: BRICS Summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian infrastructure.
5: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
6: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
5: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of the global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and the people of India for hosting the summit. We have a report.
7: South Africa, Russia, China, Brazil and United Arab Emirates welcomed India's efforts to strengthen cooperation within the grouping and advance the priorities of the Global South. President of South Africa, Cyril Ramaphosa, praised India's leadership as BRICS chair, saying New Delhi hosted a very successful summit and managed to bring member countries together to adopt the New Delhi Declaration despite doubts over reaching consensus. China's state media and leadership hailed the New Delhi Declaration as a positive step for higher quality cooperation cooperation and solidarity among global South nations. On the declaration, Russia reaffirmed Moscow's dedication to an inclusive, development-oriented partnership with BRICS partner countries. Russian Foreign Ministry reiterated Moscow's commitment to strengthening multilateralism and multipolarity, to upholding international law, including the purposes and principles of the UN Charter in their entirety. Uruguay's Foreign Minister Mario Lubetkin said BRICS New Delhi Declaration addresses the core needs of the Global South and provides a practical framework for tackling shared global challenges. UN Chief Antonio Guterres praised India's BRICS presidency and congratulated Prime Minister Narendra Modi on India's holding the BRICS chairship for the fourth time. The World Health Organization also praised the New Delhi Declaration. Director General of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appreciated the commitment to universal health coverage and resilient health systems. US-based analyst has described India's hosting of the 18th BRICS summit as a success, saying the substantive New Delhi Declaration reflects New Delhi's ability to build consensus among countries with differing views. Michael Kugelmun, a senior fellow for South Asia at the Atlantic Council, said the declaration reflects India's growing convening power and the increasing appeal of the BRICS grouping. The declaration expressed serious concern over unilateral tariff and non-tariff measures, saying they distort global trade and violate World Trade Organization rules. It also stressed the need for cooperation on terrorism, conflict prevention and peaceful resolution of disputes. During its year-long chairship, India focused on strengthening economic and development cooperation, promoting the interests of developing countries and giving greater voice to the Global South in global affairs. Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news.
8: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News On Air Official on YouTube.
5: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of the Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Wednesday. It will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions and 12 state government pavilions along with a dedicated startup pavilion. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. The Minister of Power said the approval has been given for up to 600 megawatt of export through Muzaffarpur, Dalkebar line and up to 54 megawatt through Tanakpur and Mahendranagar line. The recent floods have caused significant damage to hydropower infrastructure in Nepal, reducing its domestic power generation capacity and creating an additional requirement for electricity. The ministry said that the approval will help Nepal meet its power requirements during this difficult period and further strengthen the close and long-standing energy cooperation between India and Nepal. The Indian Air Force's first Dronathon 2026 commenced today at the Pokhran Field Firing Range in Jaisalmer. The three-day event aims to strengthen the national goal of Atmanirbhar Bharat and enhance the Indian Air Force operational capabilities in the unmanned systems domain. It brings together domestic manufacturers to showcase their capabilities and advancements in unmanned aerial systems, UAS, and counter-UAS technologies. The Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has expressed concern over prolonged protest and unrest in the region, particularly in the Rawalakot and the districts of Poonch and Sudhnothi. The rights body said the demonstrations have now completed 100 days, creating uncertainty and affecting the wider region. It warned that any further delay in meaningful dialogue could deepen public frustration, mistrust and instability. The council has urged the Pakistani authorities and all concerned stakeholders to begin immediate and result-oriented talks, exercise restraint, and pursue a peaceful and democratic resolution. This is Akashwani, and you are listening to the news at 9.
8: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
5: In Rajasthan, the ruling Bharatiya Janata Party got an overall lead in the urban local body elections held across the state. Counting of votes took place today for 10,245 wards across the state. The urban local bodies include 10 municipal corporations, 47 municipal councils and 252 municipalities. The BJP has secured a clear majority in the municipal corporations of Jaipur, Kota, Udaipur and Bhilwara, while leading in Alwar. In Bikaner, the Congress has secured a clear majority, while the party is also leading in Ajmer and Pali. In Bharatpur, independents have registered a major victory, winning 38 of the 65 votes. In Jodhpur municipal corporation,

0: Both the BJP and the Congress have won 44 seats each out of 100. Among the 47 municipal councils, the BJP got lead in 21, while the Congress is ahead in 17. Similarly, of the 252 municipalities, the BJP has won 144, while the Congress has secured victory in 92. Union Home Minister Amit Shah today said that India's culture and literature are like a lotus, with each regional language representing one of its petals. He said even if one petal is lost, the beauty of the entire lotus diminishes. He stressed that Hindi should play a central role while ensuring due respect and dignity to all regional languages. Mr. Shah was speaking after inaugurating the two-day Hindi Divas 2026 at the 6th Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan at Navi Mumbai.
1: Bhasha kisi bhi samaj ki smruti hoti hai, uska atmabodh hoti hai. हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav announced that Gujarat has achieved a major environmental milestone by completing mangrove plantation across 27,000 hectares in Kutch under the Mishti scheme, accomplishing a significant portion of its 29,000 hectare target. The minister, along with his team, visited the scientific nursery in Jakhau, which was established to raise mangrove and seaweed species adapted to local tidal conditions, with active participation from local coastal communities and the Border Security Force. Speaking to reporters today, Mr. Yadav highlighted key initiatives to preserve coastal biodiversity in Gujarat and protect endangered wildlife. The festival of Ganesh Chaturthi has been celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended the greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. The 10-day Ganesh Utsav began across Maharashtra, including Mumbai today. We have more from a Mumbai correspondent.
2: Ganesh Chaturthi celebrations began with great enthusiasm across Maharashtra, with devotees welcoming Lord Ganesha amid prayer, aarti, devotional songs and chants of Ganpati Bappa Moriya. In Mumbai, large crowds gathered for darshan of prominent idols including Lalbagh Raja, Ganesh Galli, Teju Kaya and GSB. Special arrangements have been made by the police, railways and BEST to manage crowds and traffic. In Pune, the five prestigious Manase Ganpati and other mandals welcome Bappa amid traditional celebrations. Similar festivities were reported from Sindhudurg, Ratnagiri, Nagpur, Nasik, Latur and other districts with Dhol Tasha, Tutari and Sanai Saughade, adding to the festive atmosphere. Across the state, thousands of household and public idols were installed, with the One Village, One Ganpati initiative adopted in several districts. This year, the focus is on traditional celebrations and reducing noise pollution. Health, blood donation, cultural and welfare programs are also being organized alongside the festivities. Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi tomorrow. Similar weather conditions also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan to the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hailed successful conclusion of BRICS Summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS Summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. Ganesh Chaturthi has been celebrated across country with grandeur, devotion and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क्यादत का बखूबी मुशाहिदा किया क्योंकि ज्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनाकिद हुई जब दुनिया में इख्तलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाजात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन और सलामती, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत, आलमी तिजारत में आसानी, सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज के हवाले से एक मुश्तरक बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए जिनमें 11 रुकन ममालिक, 10 शराकतदार ममालिक, 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैनुल अक्वामी तंजीमें शामिल थीं। वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाजे तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया। नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क्यादत की तारीफ की है। भारत की सदारत में मुनाकिद हुई दो रोजा सरबराह मीटिंग गुज़श्ता रोज कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान हफ्ते के रोज ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर नई दिल्ली एलामिया 2026 अपनाया। इस सरबराह मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राजील और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इत्तेफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामिया पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क्यादत ने नई दिल्ली आलामिया को आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामिया पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्तगी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेजबानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामिया से मुख्तलिफ नजरियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इतफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
3: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائش کار

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रिचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 04 81 2371 7 117 2371 7 106 और 2331 44 44, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
0: जी।
2: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं, ये हम सातीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है, ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज
0: जी। और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
3: मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं।
0: जी डॉक्टर बिष्ट,
1: नमस्कार और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की, ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सबसे बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
0: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे, कि जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है?
2: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक
0: जी
2: बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
0: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
1: हाँ, थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए, जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल केवल केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके, जैसे मैडम ने कहा, आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत जरूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत जरूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है, जब उसकी भूख है, उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते
0: जी
1: सुनाते खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था, वो हुआ था, और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियां सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब, उनमें उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
0: जी, डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वजन जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वजन बहुत कम रह जाना, यानी अंडरवेट है या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं। तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं का सवाल।
4: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार।
0: शुक्रिया जी, नमस्कार।
4: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
0: जी, तो इन्होंने दरअसल 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हुआ। डॉक्टर बिष्ट,
1: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं कर रखा।
0: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए क्या है आपका प्रश्न।
5: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा
0: हूँ। नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, ये अब कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं। पनीर नकली, खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से, तो फिर इसको वापस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें, और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो वो तो जहर पे जहर, नीम कहते ना करेला नीम तला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
0: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से इस समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कह

0: रखना चाहेंगे इस विषय में?
1: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है। तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए। कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मुनीष जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
0: बहरहाल धर्मवीर जी, शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी, क्या सवाल है आपका?
2: जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके। जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? जो हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम भाग के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
0: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाए या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल
3: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए। तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगर माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का, वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं। कई बार हम उन्हें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशा खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं। दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गांव में करते थे, रस्सा कसी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीजें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे। दीज आर गेम्स विच यू कैन डू, एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करना है। आप घर पे बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए ये सब करना, दैट इज ऑल। आंख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आंख मिचोली थी वो बहुत बहुत अच्छा खेल था क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आंख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
0: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से, राकेश जी। जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
4: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्र है कोटखाई शिमला से। तो मैं, हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चों की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है, जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल होगी।
0: जी जी जी, डॉक्टर पांडे।
1: देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले। अब आप जो सेब की बात कर रहे हैं जो ग्रो होता है, छोटे बच्चों को

0: इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस तो उसके गले में फंस सकते हैं। सो बहुत केयरफुल रहिए। छोटे बच्चे को जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको उसके दांत ना निकल आए, वो चू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है। शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने। आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं। शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं जो निगली जा सके बच्चे के द्वारा वो देनी चाहिए। शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं। उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको। तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से।
1: जी जी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी। संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: शिक्षित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करे, काम के बाद माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक।
1: जी जी जी जी जी हाँ, ये आपने एक अच्छे उदाहरण दिए। और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो, और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर डालिए 0 और फिर नंबर 2331048। या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044। तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए। हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही आहार यदि कहें, लेकिन शायद पूरक आहार के विषय में
0: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए।
1: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
3: मुनिषे का इस पर अन्न प्राशन और
1: जी
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी, परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देते था, उसके लिए अन्न प्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
1: और अन्न प्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल
1: संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार है, तो उसी तरह अन्न प्राशन सबसे पहला।
0: और एक इसमें बात और है कि अन्न प्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
1: जी जी जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविजन का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे, तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं। वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्सचर पता चल रहा है और वो उस वक्त जो खाने का जो मजा लेना है वो नहीं ले पाता, तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना उनको फूड फैटिज्म भी ज्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा होती है।
1: तो डॉक्टर पांडे आपसे हमारा एक सवाल था, वो चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा, तो यूनिसेफ ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
0: तो दो चीजें हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने दो महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा, तो ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, और एक एरिया है क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
3: जैसा मनीषी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा, तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
1: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं, पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है, आप हमें दीजिए इजाजत, मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार चंदन दास के स्वर में।

फनकार मिताली सिंह के स्वर में ये गज़ल आपने सुनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल गायक कलाकार भूपेंद्र सिंह के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल का। आज के कार्यक्रम का कि ये आखिरी गजल श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फनकार चंदन दास के स्वर में।

श्रोताओं, फनकार चंदन दास के स्वर में गाए हुए इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म सूरज के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, फिल्म सूरज से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे हर्षद जयपुरी ने और धुन थी शंकर जयकिशन की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। आवाज़ गायक कलाकार मुकेश की, बोल लिखे हैं हर्षद जयपुरी ने और धुन शंकर जयकिशन।

गायक कलाकार मुकेश केसवर में गाया हुआ ये गीत आपने सुना फिल्म मेरा नाम जोकर से। बोल लिखे थे हर्षद जयपुरी ने और धुन थी शंकर जयकिशन की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला।

गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। बोल लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने और धुन थी आरडी वर्मन की। आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जॉनी मेरा नाम से। बोल लिखे हैं इंदेवर ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

0: फिल्म रामपुर का, माफ़ कीजिएगा, जॉनी मेरा नाम के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गायक कलाकार एस जानकी, मोहम्मद अजीज़ और साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म आखिरी रास्ता से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready?

श्रोताओं, फिल्म आखिरी रास्ता के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, the Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security,